श्री राम के हाथों जब पल भर में शिव जी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

ससुरा जगुंस तुमन तजिन्ना तड़ी सोडा दा पंजगार कामी साजिकन कमेंतात एक बजुड़ प्रधानमंत्री मंजे सगपादा पजावत उन्तुक मनें पातकान वाजगा सबगे पुसात टाटा केजाजा पमदिंता इकुते या कमेंतात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदिंता दक्षिण दंगन सदातुस तजापन पुजु तिगा चयन पजावत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सताव आयस अंकतन द्वारिव द्वापुजन पात यंग सातिनी मंजा यानी पनुगासन सबगे असिस्टेंट सेक्रेटरी टीबत भाई कॉमनते रंजन डिपार्टमेंट की नियुक्ति जी पाड़ा हजी सजा सा द्वापुजु तिगा जुनी द्वारिव द्वापुजन नाम जिससे बातित पदा चयन पजावत मुड़ा इतु बदबगी पंग पंगायमान मध्ये का सजम पयतियन या पंगन जन्मासा पनुंगासन जी कमंत दिन सत बदविचर कपड़ा पद पजावतितु प्रधानमंत्री मन तकन ब ससुरा द्वातन मंजयनी पंगायमान या पंगन जनपम पयाजदन एडमिनिस्ट्रेटिव मधिका किनी बदाड़ा पड़ताप कुश्यज डिमन कपुतुसन मधिका तिड़ाहन्याकन मनंतुकन करियर मरिका संदेदी तथा विजुगा मसद पंजुतान अर्गन गदा दिया मनकन कनबावा उजियन स सुंगुनिया दजम पर्यायनन पुब्लिक डिमुजे सत मनंगनी सितुआसी न्याता दंगन इंटिग्रितास कपकान जन कमिंटमेंट प्रधानमंत्री मंडल पद अपद तूज सिपु नगद मुड़ा इतुंतुक मन मंडली का सिकन दीदी पड़ा पमंगनन बांसा दंगन तुझान यंग कुआत समंगत इनोवासी जन टाटा कजया पमरिंतान यंग बदादियंतासी पड़ावाद का दिया मोमिंता पदा पजावत उन्तुक सजायु मनिंकात माप से दिया मोमिंता पदा पजावत उन्तुक सजायु मंग इंगात दंपा को मनुष्यान जी बाजिक सत्या बदकास अनमिनिस्तासी दिया मंगत कन बा सत्या बदकास मोवाकी अस्पिदासी को कुआतिदान जन कोहिलुपन बन्याक वजगन गदा निगन मन कन कन मंत नागरिक देव भव अतो मुमन्यंग वजगन गद सपगी सोसक यंग पातु डियर मते यायक न देवा दिया मंगजत पद पजपतंतु मनें पतकन वजगन गद सपगई पुसाद दादी सत्याप को पुतुसन सतमो मस्तिकन टटक जया पमरिंतान तथा एम्पैथिक रेस्पॉन्सिव जन इंक्लूसिव सत्या बदकास मवाकई आस्पिदासी को खाते दन जन को एडुपन बन्ने को अर्गन गद उजाज बदन मंतरी कपड़ा पद पजबत मुड़ा आईएस संबादी मोमिंता मदिका उन्तुग मनें पतकन मस्यत का सबगे पुसा दरी सत्याप को पुतुसन जन मास्तिकन टाटा कजया पमरिंतान तताप एम्पाथिक रेस्पॉन्सिव जन इंक्लूसिव पाक मोदी जुगा मन्य तकन बावा तंतांगान पमंगनान एंग बसा तिरादपा डिसय से साइकन सचदा तो कंतक कोतक अतौसी जो जन कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव अंतर डिपार्टमेंट संगत पंतिंग उन्तु मंच पे हसे यंग बदमकना सत्ता बदकल्याण जुता दंगन मन्य रति बीसी विकसित बाद द्वादिबु एम्पत पुयु तुजु अतो इंडिया माजु द्वादिबु एम्पत पुयु तुजु प्रधानमंत्री मन्य तकन बवा सत्याप को बिजकंजन को पुतुसन एडमिनिस्ट्रेटिव दयम बोबद पड्यकड़े मंदकन मंदतंग हाजुस बद कंट्रीब्यूसी पड़ा पम्बंगन इंडिया यंग माजु प्रधानमंत्री मंगलेश भाई ट्रांसफॉर्मेशन तथा कजया पमरिंतान सजम सतुड्यकड़े तथा सदाया मंचतत ब एडमिनिस्ट्रेसी सुड़ा बद अजी दरी मोड़े यंग बद पुसात पड़ा प्रोसेस मनुजु पंदकतन यंग बद अधीनतासी पड़ा हसे दंगन मनकन कन पंतिंग ने टाटा कजया बद बसी डाटा प्रधानमंत्री मन तकन ब डाटा तिड़ा बजा डिपनंग सकदत सबगे अंका मयंग मयाइन कन सबगे चदमिनन दादी कोहिडुपन तंतंगन जन आस्पिदासी कलेक्टिव जुतान दंग

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता

0: के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA

0: ईए की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांतिवार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग।

0: यूनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफास से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बर्तानिया के कारोबार और तिजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तिजारती मुआहदे के निफास के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक्किदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-कौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार हैं ऋत्विम सान्याल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार थे ऋत्विम सान्याल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगाब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे फिल्म खिलौना के कुछ चुनिंदा गीत, और दिन में 10:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, जिसमें ईमेल पर आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज चिकित्सा सेवाओं का दायरा केवल दवाओं के निर्माण और वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक और रोगी केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर संगीता जी मगन जी को। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, लेखिका और सलाहकार हैं, और आपको फार्मेसी प्रबंधन शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा

0: व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। आज आप हमारे साथ फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान के विकसित होते संबंधों, स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे, हम आपसे जानकारियां लेंगे। संगीता जी, जब भी कभी हम बाजार जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, दवा लेने के लिए, तो अक्सर हम फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, इन 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं, तो क्या इनमें कोई समानता है या कोई अंतर है?
1: पहले तो थैंक यू सो मच, एक मेरे लिए ही ऑनर है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, केमिस्ट की और ड्रगिस्ट की। तो बेसिकली आज हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस है भी और कई जगहों पे एक सा ही लगता है। तो हर केमिस्ट शॉप पे जहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान, दवाइयाँ, जिसको ड्रगिस्ट बोलेंगे, ये चीजें मिलती हैं। फार्मासिस्ट बेसिकली वो हैं जो एक क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी एक सर्टिफाइड स्टडी करी है, तो उनको हम एक क्वालिफाइड पर्सन समझते हैं जो ये ड्रग्स को या दवाइयों को डिस्पेंस करने के योग्य हैं। तो जब हम केमिस्ट कहते हैं तो वो केमिकल से ज्यादा रिलेटेड स्टडी है। ड्रगिस्ट कहते हैं उनको जहां पे मेडिसिन सोल्ड किए जाते हैं। इन सब की स्टडी करके, जो पूरी अच्छे से उनकी पढ़ाई करके, क्वालिफिकेशन लेकर वहां बैठकर जिसको बेचने का हक है दवाइयों को, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी। और ये जो दवा उद्योग है, जो कंपनीज है, इनमें और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट साइंस के बीच में क्या संबंध है?
1: देखिए, दवाइयों का काम है हील करना, ट्रीटमेंट करना।
0: जी,
1: जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज एक फार्मेसी जो है या फार्मासिस्ट जो है, कुछ साल पहले, जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने एक फार्मेसी पढ़ा था, मैं 1986 की बात कर रही हूँ, तो जब हमने पढ़ा था तो फार्मासिस्ट का काम था दवाइयां देना। तो अब जो है, मैनेजमेंट के बिना एक फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट ही बनकर रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, क्योंकि इसमें अब इतना इवोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे नए रोल्स आ चुके हैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां देने का काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्यों जरूरी है?
1: मैनेजमेंट स्किल का मतलब है आप लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन को चलाते हैं और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम एक सोचें कि एक केमिस्ट या फार्मेसी शॉप है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका रोल सिर्फ दवाई देना तो नहीं है, उसका रोल है कि वो अपने वेंडर्स के साथ कैसे बात करेगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम को कैसे लीड करेगा। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को सिखाता है, अकाउंटेंसी भी सिखाता है उनको, उनको लीडरशिप भी सिखाता है, उनको टीम स्किल्स भी सिखाता है, उनको ये भी सिखाता है कि मेरी दवाइयों की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, मेरी दवाइयां किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो और हर समय अवेलेबल हो, शॉर्टेज ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही हम सीख सकते हैं।
0: यानी कि मैनेजमेंट की भूमिका एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसके बिना हम कह सकते हैं कि अगर किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर फार्मासिस्ट है, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं पता है या फिर नहीं कर सकता है, कम स्किल्ड का है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
1: बहुत सी परेशानी हो सकती है। बिकॉज हमारे को ये सोचना है कि ये क्रिटिकल दवाइयां हैं, इसकी मेरे को कितनी जरूरत पड़ती है और इसका मेरे पास में कितना स्टोरेज होना चाहिए।
0: और खासकर इसमें तो जो डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं उनको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है वो फार्मासिस्ट है।
1: देखिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये दोनों पार्टनर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम में।
0: जी।
1: आज जो सिस्टम है वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो हम कहते हैं कि हर रोल जो प्ले हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर, वो किसी का ज्यादा और कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो इन टच में आते हैं वो या तो नर्सेज आती हैं जो इन पेशेंट्स हैं, और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट आता है।
0: आपने नर्स की बात की, तो नर्स को भी एक फार्मेसी का ज्ञान होना जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है, लेकिन होता नहीं है। उनको दवाइयां देना आता है, लेकिन उनको दवाइयों का डोसेज का स्टडी और जो ड्रग इंटरेक्शंस का स्टडी है वो नहीं होता है। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टनर्स हैं। ये टीम ऐसी है कि एक की गलती से भी डिस्पेंसिंग एरर हो गया, उनको देने का एरर हो गया, तो डॉक्टर की पूरा काम जो है वो निल हो गया,
0: फेल हो जाता है।
1: तो ये सब पार्टनर्स हैं, तो तभी वो सिस्टम जो है अच्छा स्ट्रांग बन सकता है।
0: हम ये कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट्री है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो अस्पतालों में या जो केमिस्ट के पास या फार्मेसियों में जो एक इन्वेंट्री होती है, जो भंडारण होते, स्टोर होता है, और जो एक सप्लाई चेन जो होता है, जो प्रबंधन किया जाता है, था उसमें रोगियों के यानी कि पेशेंट के देखभाल पर किस प्रकार का असर करता है, किस प्रकार प्रभावी होता है?
1: देखिए, बहुत सी ऐसे दवाइयां हैं जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर उनको किसी को फ्रिज में रखना है, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखना है।

0: किसी को सिर्फ एक कूल डार्क प्लेस पे रखना है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कितनी दवाइयां मेरे हॉस्पिटल में यूज होंगी उसकी प्लानिंग भी एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट वो सब फार्मासिस्ट ही कर सकता है, बिकॉज डॉक्टर तो ये नहीं बता सकते हैं कि इतने पेशेंट्स हैं इतनी दवाई रखो। फार्मासिस्ट ये बता सकता है कि इस दवाई के मेरे पास में ये चार तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वो ही डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये चार हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी का रोल रहता है उस इन्वेंटरी को मैनेज करने के
1: जी,
0: लिए।
1: जी जी, तो अस्पताल मेडिकल टीम और दवा उत्पादक, और कहना चाहिए कि फार्मासिस्ट केमिस्ट में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए एक हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं, आज एक रोगी सिर्फ नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है। ठीक है, एक रोगी एंटर करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले कौन मिलता है उसको? एक गार्ड। अगर वो गुस्से से, बदतमीजी से, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है, तो वहीं पे इंप्रेशन हॉस्पिटल का खराब हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद आते हैं ओपीडी में, रिसेप्शनिस्ट है, ये सभी जो है वो भी एक पार्ट है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पेरिफरी के ऊपर बैठे हैं, बाहर की साइड पे। उसके बाद जब अंदर की टीम की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इन्हीं का रोल है मेजरली उस पेशेंट को सैटिस्फाई करने का। देखिए हमने आज साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, लेकिन हम अमर तो नहीं है
1: जी।
0: हम सबका कुछ ना कुछ एंड है, लेकिन दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी करते हैं
1: जी।
0: और जो उम्मीद हमें चाहिए, जो कंपैशन, जो एम्पथी हमें चाहिए, वो पूरी टीम मिलकर ही दे सकती है।
1: बिल्कुल, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिखते हैं, डॉक्टर ने दवाई लिखी और छोड़ दिया, उनसे कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसी बात को अच्छी तरह से फार्मासिस्ट समझाता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ही समझाता है।
0: बिल्कुल,
1: वही संतुष्ट कर सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपको दवाई किस प्रकार से लेनी।
0: देखिए वो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो एक फार्मासिस्ट का है। हॉस्पिटल के बाहर ही मैंने बहुत वजह से, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम फार्मेसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड्स देखते हैं जो केमिस्ट के लगे हैं, 70% ऑफ ऑन मेडिसिन
1: जी।
0: तो हम असली दवाइयां इस हॉस्पिटल की फार्मेसी से क्यों लें, हमें जो 70% ऑफ पे बाहर मिल रही है। तो केमिस्ट और जो फार्मासिस्ट वहां क्वालिफाइड बैठा है, उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि हमसे दवाई क्यों लें।
1: यानी कि ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा
0: है, एक मैनेजमेंट का हिस्सा है
1: किस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करना,
0: ट्रस्ट बिल्ड करना है।
1: मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो सिंपैथी, एम्पैथी और ट्रस्ट, इन सब की बात करें, आज जमाना है नई तकनीक का, AI का और टेलीमेडिसिन युग का है। कुछ ही चंद घंटों में आपको दवाइयां हाजिर हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दवाइयां, आपको उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव हो रहा है रोगी पर, किस प्रकार का असर हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, आत्मीयता है, वो कम हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
0: देखिए मुझे क्या लगता है, आज का जो पेशेंट है ना, वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। आज चैट के ऊपर डाल दीजिए अपने थोड़े से सिम्टम्स, वो आपको आपकी बीमारी बता देगा
1: जी।
0: तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें?
1: बिल्कुल
0: गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से AI कितना भी डेवलप कर ले, जब तक एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो काम जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमने दवाई ली, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें ह्यूमन कनेक्टिविटी की जरूरत है। और वही जो हीलिंग है आती है बिकॉज लोगों में एम्पथी है, कंपैशन है, बात करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको AI नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल, दवाइयां केमिस्ट तक पहुंचती हैं, जो दुकानों तक पहुंचती हैं, उनकी जानकारी एक MR देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका होती है। आप इसे किस प्रकार देखती हैं?
0: देखिए जो मेडिकल रेप्स हैं यूजुअली वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमेशा फार्मेसी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाती हैं मेडिकल रेप्स के लिए।
1: अच्छा,
0: बिकॉज उनको एक्सपर्टीज पता है, डॉक्टर उसमें कुछ भी पूछें उनकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है, और उन्हें पूरा के पूरा उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास में एक्सपर्टीज है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं यूजुअली। अच्छा। अच्छी कंपनीज जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या M.Pharm पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाते हैं, इसीलिए आज हम मैनेजमेंट के साथ में जोड़ रहे हैं इसको कि अगर हमने फार्मेसी मैनेजमेंट सीख लिया है, एक अलग से कोर्स MBA करा है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस नहीं करनी है, हमारे पास में और बड़े रोल्स आ जाते हैं जो एक हॉस्पिटल में निभाए जाते हैं।
1: संगीता जी, अभी हमें जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होगा, और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, जो श्रोता हैं सोच रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मेसी के क्षेत्र में जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे आगे इसका क्या भविष्य है?
0: तो भविष्य हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोल्स आ चुके हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ही। पहले सिर्फ फार्मासिस्ट जो था अपनी फार्मेसी शॉप तक लिमिटेड था, अब वो क्लिनिकल डिसीजंस के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्लिनिकल ये जो फार्मेसी है वो एक पूरा का पूरा, वो भी डॉक्टर्स के जैसे पूरे राउंड्स लेते। तो इसलिए जो रोल्स हमारे पास में और उभर कर आ रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ उनको दे सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उनके पास में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नए निकल कर आ रहे हैं फार्मेसी की स्टडी से, क्योंकि हर सिचुएशन जो है एक्सपैंड हो रही है। जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो इस केयर सिस्टम के अंदर बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज हम फार्मासिस्ट के लिए निकल कर आ रहे हैं।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मेसी का कोर्स है उसके साथ साथ में जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट्स आज MBA करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि MBA का मतलब बिजनेस को मैनेज करना है। वो बिजनेस फार्मेसी का हो सकता है, वो बिजनेस हॉस्पिटल का हो सकता है, वो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए MBA करने का मतलब है या मैनेजमेंट स्टडी करने का मतलब है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं।
1: जी संगीता जी, अब चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये कई बार हम सुनते हैं फार्माकोलॉजी, ये क्या है?
0: फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों की और डिजीजेस की स्टडी। किस डिजीज के लिए कौन सी दवाई जरूरी है, किस डोज में जरूरी है, इन सब चीजों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं।
1: तो क्या ये फार्मासिस्ट से बिल्कुल ही अलग है?
0: नहीं, ये फार्मेसी के अंदर का ही एक कोर्स है।
1: अच्छा,
0: फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक फार्मेसी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो बहुत सी स्टडी कर एक फार्मासिस्ट बनता है। सो ये हम ना सोचें कि वो स्टडी नहीं करके आए, उनकी बहुत सी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो। इनफैक्ट लॉ भी पढ़ते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर वो आते हैं। तो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट एक और एंटायर ब्रांच निकल कर आ रहा है जिसके अंदर डिजीजेस की और एक्सटेंसिव स्टडी होगी और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या डोसेज, क्या ड्रग इंटरैक्शंस, किस तरह से दवाई देनी है, कब देनी है, और वो हर केमिस्ट्री उससे जो रिलेटेड है उसकी स्टडी से वो पढ़ते हैं।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं चलते चलते कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी का कोर्स है, फार्माकोलॉजी है, कंप्लीटली वो मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों साथ साथ रहे तो फार्मेसी फार्माकोलॉजी ये और भी ज्यादा आत्मीयता, संवेदनशीलता और पेशेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके आए हैं, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम उसमें बहुत से आजकल ऐसे मॉड्यूल्स भी डाले जाते हैं जिसको हम पीपल्स स्किल्स कहते हैं, लोगों से कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन सब चीजों की स्टडी भी करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
1: तो श्रोता मित्रों, फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान का समन्वय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी और इसमें और भी इनोवेशन होते रहेंगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे। संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है और ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

وكواعب أترابا وكأسا

قد جاء

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान

0: शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing rescue and recovery operations in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders, journalists and social workers. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub and spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. Speaking on the occasion, the minister said the new hub and spoke model paves the way for a monumental shift in how citizens travel.
2: This has been long pending reform that we wanted to bring in Indian civil aviation. India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. In the next 6 weeks, just like how we have started Varanasi here today, we are connecting it to Delhi airport as the hub. And from there, they can connect to 17 cities across the world. And now, taking the similar concept in the next 6 weeks, we want to start it in 6 new more airports.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking, and politics suited to the social media era.

0: 당근. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है घर आंगन. आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी. आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राधा पाठक. स्वीकार करें मेरा नमस्कार.
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती. एफएम गोल के सभी सुनने वालों को और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार.
0: और रश्मि, आज बहुत ही हमारे लिए गर्व का पल है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जो समारोह हुआ उसमें पार्श्व गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
1: जी बिल्कुल. और अपनी मधुर आवाज जो से सुनने वालों के दिलों पर राज करने वाली अलका याग्निक को जो ये पद्म सम्मान मिला है राधा, ये हिंदी सिनेमा के संगीत जगत के लिए बहुत गर्व का क्षण है. दशकों से जो है उनके गीत हमारी खुशियों में, यादों में और भावनाओं में उन्होंने हिस्सा बटाया है ना. और ये सम्मान उनकी अद्भुत प्रतिभा, समर्पण और संगीत के प्रति उनके अमूल्य योगदान को समर्पित है.
0: अलका याग्निक जी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई. उनकी आवाज ने भारतीय संगीत को नई

ऊंचाइयां दी हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और मुझे याद है रश्मि की 90s का वो दौर जब हर गली हर नुक्कड़ पर सिर्फ अलका याग्निक की आवाज ही सुनाई देती थी और दिलों को बिल्कुल मदहोश करने वाली आवाज थी अलका याग्निक की।

0: ये गीत हमने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। आज है निर्जला एकादशी और साल भर की 24 एकादशियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। बहुत सारे लोग तो बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और इसमें दान पुण्य और इसमें जो दान दिया जाता है ना, ज्यादातर अन्न, जल, वस्त्र और पंखे का दान जो है वो बहुत शुभ माना जाता है।
1: देखो राधा, जो

0: हमारी सारी ये जो संस्कृति से जुड़ी हुई हैं ये परंपराएं जो इस समय इतनी गर्मी होती है, तो ये माना जाता है कि आपके आसपास जो लोग हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर अपने साथ लेकर चलें। तो साथ लेकर आप तभी चल सकते हैं जब आप कुछ कर रहे होंगे। उन्हीं से ये बात जोड़ रही हूँ भाई, जब आप कुछ काम कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का प्रश्न, यानी कि जब आपको आपकी पहली सैलरी मिली तो वो दिन कैसा था, कैसा लगा, इसी से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न। आप हमें बता सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।
1: हाँ
0: क्योंकि राधा, पहली सैलरी मिलना ना बहुत भावुक और गर्व से भरा पल होता है, और पैसा ही नहीं मिलता भाई, आपकी जो मेहनत होती है रातों को जागकर, जो आपने पढ़ाई की होती है, और आत्मनिर्भर आप बनते हैं तो ये पहला कदम होता
1: जी
0: है।
1: हाँ, और पहली सैलरी मिलने का जो एहसास है जिंदगी में सबसे खास और यादगार पलों में से एक होता है। ये मेहनत की कमाई आपको आत्मविश्वास तो देती है, एक बहुत सुखद अनुभव भी देती है। तो इस पल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी रश्मि ने बता ही दिया, मैं फिर से बता देती हूँ, fmgoldga@gmail.com। आप इस पर ईमेल कीजिए, हम आपका ईमेल शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। तो अपनी सैलरी को यादगार और उपयोगी बनाने के लिए आपने क्या किया था पहले दिन, तो वो आप हमें जरूर लिखिएगा।
0: भाई कुछ तो अच्छे तरीके आप, तुम कहो तो राधा मैं बता दूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखो, अपनी कमाई से भाई माता पिता के लिए कुछ खास खरीद सकते हैं, जैसे भाई माँ के लिए साड़ी या घड़ी, या उनके पसंदीदा रेस्टोरों में डिनर करा सकते हैं, लंच करा सकते हैं, है ना भाई। उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलेगी ना राधा, मैं सच कह रही हूँ कि वो तो सबसे बड़ी कमाई होगी।
1: बिल्कुल सर, और पहली सैलरी का हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने माता पिता को दी जाए।
0: हाँ, और भाई माता पिता तो को तो दें ही, साथ में अपने लिए भी कुछ इनाम छांट लें कि भाई आपने
1: आपकी मेहनत है।
0: पूरा जो मेहनत की थी उसका फल मिला, अपने लिए भी कुछ खरीदें, और साथ में उनको ना भूलें जो आपके सफर में साथी रहे, उनके लिए भी कोई तोहफा जरूर ले लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: पत्थर के सनम, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। और रश्मि, जो हमने प्रश्न पूछा था, जो आपने प्रश्न पूछा था, उसके हमें संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। आपके हाथ में भी मैं देख रही हूँ, ईमेल से निकली हुई है
1: जी। एक हमारे पास मेल आ गई है नवीन भाटिया जी की। वो कह रहे हैं कि जो पहली सैलरी उन्हें मिली तो उन्होंने अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट ले लिया और जो बाकी बचे पैसे से उन्होंने घूमने चले गए। भाई बहुत अच्छे, घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। जब आप घूमते फिरते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे भारत बहुत खूबसूरत है, जरूर घूमने जाइए, है ना।
0: और घूमने से भी तनाव खत्म होता है, और आप जब पहली सैलरी मिलती है ना, उससे जब हम घूम के आते हैं उसका तो अनुभव ही दूसरा होता है,
1: उसकी तो यादें बनती हैं,
0: उसकी यादें बनती हैं। अब हम एक संदेश और प्राप्त हुआ है, ये वंदना शर्मा का हमें मैसेज मिला है, और ये सेक्टर 6 रोहिणी से लिखती है कि जब पहली सैलरी मिली थी उनके पापा के लिए, वो सबसे गर्व का पल था। उन्हें याद है कि उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो हेल्थ क्लिनिक में हुई थी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में, और कॉलेज की पढ़ाई करते ही उनकी जो उनका जन्मदिन का महीना था उसमें ही उनके जीवन के नए सफर की शुरुआत हो गई थी। उनकी जो पहली सैलरी, उन्हें 5,000 रुपये का चेक मिला, उन्होंने सीधे जाकर अपने पापा को दे दिया। वो चेक उनके पापा जी ने बड़े प्यार से देखा और संभाल कर अपने पास रख लिया। उनकी आंखों में जो गर्व और खुशी का संतोष था वो उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उन्हें लगा, वंदना जी को लगा कि उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत जो है ना, वो मुस्कान उनके पिता की आंखों में आ गई है। और वो आगे ये भी लिखती हैं कि पापा जी को संगीत सुनने का बहुत शौक था। वंदना जी की पहली कमाई की खुशी के लिए उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा, और जब वो घर आया उस पर पहली बार गाने बजे, ऐसा लगा जैसे घर में खुशियां गूंज रही हो। उस म्यूजिक सिस्टम की हर धुन में पापा का प्यार, उनका आशीर्वाद और वंदना जी की मेहनत की मिठास बसी हुई थी।
1: भाई वाह भाई, आप जब आप संगीत सुनते हैं तो वैसे ही तनाव दूर हो जाता है, और अगर FM गोल्ड चैनल चल रहा हो, आकाशवाणी दिल्ली का, या इंद्रप्रस्थ चैनल चल रहा हो, तो बात ही क्या है ना।
0: और खूबसूरत गाने जब सुने जाते हैं और वो नगमे जो होते हैं ना, हमारी यादों में बसे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: कोई भी नगमा हम सुनते हैं ना तो वो हमेशा हमारे दिल के करीब होता है, हमें लगता है कि अरे ये हमारे दिल की किसी याद से जुड़ा हुआ है।
1: जी वो तो जरूरी है ही, लेकिन एक बात और जरूरी है राधा, मैं चाहती हूँ तुम उसके बारे में जरूर बोलो।
0: हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, कि महिलाएं पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं रश्मि जी, लेकिन अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं।
1: जी, जब और कमाई ऐसा बार बार तो, होता है। हाँ जी बिल्कुल, कमाई तो जरूरी है लेकिन पोषण का ध्यान रखना भी
0: बहुत जरूरी है। और 30 साल के बाद एक उम्र, वैसे तो पोषण का ध्यान हर उम्र में रखना चाहिए, बचपन से ही शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन एक उम्र होती है कि 30 के बाद आपको न्यूट्रिशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र में शरीर में हार्मोन्स बदलते हैं, इसका असर जो होता है शरीर में पोषक तत्वों के इस्तेमाल पर पड़ता है, खासकर कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत बढ़ जाती है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। तो उसके लिए रश्मि जी क्या करना चाहिए?
1: भाई हम तो ये कहेंगे, भाई शरीर में आयरन की अगर कमी हो जाए तो थकान महसूस होती है, कमजोरी आती है, चक्कर आने लग जाते हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है, और कई बार तो राधा बाल भी झड़ने लग जाते हैं, तो एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो क्या जरूरी है कि भाई अपने खाने में फल लें, सब्जियां लें, दालें लें, अनाज लें, और प्रोटीन जरूर शामिल करें, और ये बहुत महंगे चीजें नहीं है, जो रोजमर्रा के जो आपके खाने हैं वो अपनी थाली में संतुलित रूप से मौजूद होने बहुत जरूरी है।
0: क्योंकि आयरन के लिए पालक ली जा सकती है, दाल है, बीन्स है, कैल्शियम के लिए दूध, दही, हरी सब्जियां हैं, विटामिन डी के लिए भाई आप धूप में बैठिए सबसे बढ़िया,
1: तो सर्दियों में जरूरी है,
0: और आप हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खा सकते हैं। तो ये लगता है ना कि भाई न्यूट्रिशन के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या अलग से कुछ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप छाछ पीकर प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए।
1: जी जरूरी है, और एक ऐसी चीज है जो

0: मधुमति फिल्म में ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड से। और अब एक ईमेल हमें और मिल गया है जिसमें डॉक्टर विनोद कुमार हैं जो लिखते हैं रोहिणी से कि मुझे सैलरी मिली थी जब पहली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था और मैंने अपनी पूरी सैलरी अपनी मम्मी के हाथों में दे दी थी। देख क्या बात है रश्मि।
1: देखो ये समय उस समय का है कि जब जो तनख्वाह मिलती थी ना वो कैश के रूप में नकद रूप में मिलती थी। मुझे याद है मैंने भी अपने जो पहली तनख्वाह थी वो पूरी की पूरी अपने पापा के हाथ में रख दी थी। तो उस समय का वो समय ऐसा ही था कि कैश मिला और
0: कैश में तनख्वाह मिली
1: और हमारे माता पिता को वो सौंप दिया और जो उनकी खुशी चेहरे पे जो झलकती थी ना वो हमारी सबसे बड़ी कमाई होती थी।
0: और उसमें से वो थोड़े से पैसे रख देते थे भगवान के नाम के
1: जी,
0: थोड़ा सा भगवान के नाम का, क्योंकि भगवान के नाम का भी हमारे देश में परंपरा रही है कि थोड़ा सा हिस्सा जो है ईश्वर के नाम पर दान पुण्य के लिए निकाला जाता है।
1: और एक और जवाब हमारे पास आ गया है। आप हैं हमारे साथ सुरभि, ये दिल्ली से हमारे को मैसेज कर रही है। ये कहती है कि जब पहली सैलरी आई तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी और एक महीना जब बीता तो समझ में आया कि भाई बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो
0: ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि अब आजकल की जो जनरेशन में देख रही हूँ ना उनको तनख्वाह का के मायने नहीं पता है तो वो क्या करते हैं तनख्वाह ना खर्च करना शुरू कर देते हैं और जब महीने का अंत आता है तो पता लगता है जी बजट तो बना ही नहीं आपने, तो क्या किया।
1: तो जो हमारी जनजी है वो जानती है कि बजटिंग कितनी जरूरी है, उसका सही इस्तेमाल जो आपकी मेहनत से कमाए गए पैसे हैं वो भी बहुत जरूरी है। मौज मस्ती भी कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए और अपने भविष्य के लिए भी कुछ निवेश करते हुए जरूर चलिए। और

0: और भाई जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप मेट्रो में जाते हैं, बसों में जाते हैं, तो बसों में क्या सुविधा दे रही है दिल्ली सरकार और क्या क्या जरूरी है यही बताने जा रही है राधा।
1: जी हाँ, जैसे कि ये तो सबको पता ही है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक पिंक सहेली कार्ड सार्वजनिक परिवहनों जैसे बस और मेट्रो के सफर की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं।
0: जी
1: इसके
0: बिल्कुल
1: लिए जगह जगह कैंप भी लग रहे हैं और बस डिपो में भी आप बनवा सकते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना है और आपका 2 मिनट में वो कार्ड बन जाता है जिसमें आप बस और मेट्रो में आसानी से सफर कर सकते हैं। बस में तो फ्री है
0: लेकिन जी जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: मेट्रो में आपको रिचार्ज करवाना
0: लेकिन एक
1: पड़ेगा।
0: और सुविधा मिली है अब तो भाई, लेडीज स्पेशल जो बसेस हैं उसमें महिला पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे और महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल हुई
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल अच्छी। और इसमें ना सरकार ने कुछ मार्गों को ना टारगेट किया है कि ये जो जहां ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सफर करती हैं ऑफिस टाइमिंग में, वहां लेडीज स्पेशल बसें चलाई जाएंगी और सुबह शाम महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।
0: और सराधा अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी योजना है कि महिला होमगार्ड मार्शलों की भी तैनाती की जा
1: और
0: सकती है।
1: उसमें डीटीसी बस में एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा जो 112 जो इमरजेंसी नंबर है दिल्ली पुलिस का, वहां से एकदम से इमरजेंसी में वो उस बस को जोड़ देगा।
0: भाई वाह क्या बात है, इससे तो और भी सुरक्षा बढ़ जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने में लगने वाला समय भी कम होगा और जो महिला यात्रियां होंगी उनको त्वरित और प्रभावी मदद मिल
1: मिल
0: पाएगी।
1: पाएगी।

0: ये गीत हमने पारस मणि फिल्म से लिया था, लता मंगेशकर की आवाज में। और रश्मि, एक हमें मेल और मिल गई है। ये लिखते हैं पुनीत रावत, ये लिखते हैं शहादरा की तरफ से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि जो खुद के पैसों से चीजें खरीदने पर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है
1: जी।
0: और एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि पैसों को सही जगह खर्च करने और बचाने की समझ भी बढ़ती है। खुशी से ये लिखते हैं कि पहला जो सैलरी मिलती है ना, जब पहली बार, तो पहला वेतन घर वालों या माता पिता को देने पर जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है
2: जी। और एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है मयूर विहार से।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: वो
0: अब
1: इसीलिए
0: समझ में
1: कहते
0: आता
1: हैं
0: है।
1: कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो
0: जी
1: आजकल
0: बिल्कुल
1: बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि वो इस तक काबिल बन पाए और आत्मनिर्भर बन पाए।
0: जी बिल्कुल,
1: जब वो घर की जिम्मेदारियों को अभी से समझ रही है तो आगे तो फिर कितना अच्छा रहेगा उनके
0: जी
1: लिए।
0: बिल्कुल, तभी तो हमारा जो देश है और भी विकास की ओर जाएगा, है ना।
1: हाँ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: तो घर पर जो है अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, उसकी कुछ आसान बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं।
0: भाई 21 जून अभी गया है और मुझे लगता है तुम भूल तो नहीं गई 21 जून।
1: नहीं नहीं, लेकिन योग दिवस तो इसी जून में ही था, अभी तो जून चल ही रहा है, लेकिन योग जो है वो हमेशा ही करना चाहिए, उसके लिए एक दिन का महत्व नहीं है योग के लिए। योग और घर पर भी योग किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कई महिलाएं मिलती हैं, कहती हमें तो वक्त ही नहीं मिलता, हम कैसे समय निकालें। तो भाई घर पर भी आप जल्दी उठिए, पानी पीजिए, ताजी हवा लीजिए, कुछ देर शांत बैठिए। शांत बैठना ही अपने आप में जो मेडिटेशन होता है ना, कि अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अरे ध्यान कैसे करते हैं, तो आप बैठिए तो सही,
0: जी
1: 2 मिनट ध्यान तो लगाइए।
0: बिल्कुल, और सुबह के समय अभ्यास करना, शरीर को जगाना, मन को सक्रिय करना और शांत ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने के लिए तो बिल्कुल आदर्श समय है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो अपने शरीर को थोड़ा खिंचाव वाले आसन करें, बहुत आसान आसन होते हैं भाई, आपका जो शरीर होता है वो बिना जल्दबाजी किए हुए भी ऊर्जावान बन जाता है। और जैसे शाम का अगर समय है, जब आप घर वापस लौटते हैं थोड़े समय बाद, तो आप ऐसा करें उस समय भी थोड़े जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं, अपने मन को तैयार कर सकते हैं। साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल धीमी गति वाले व्यायाम चुन सकते हैं, ताकि आपको आराम भी मिले और दिन भर की थकान भी दूर हो जाए।
1: और ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए तो 20 और 8 का एक रेशो का, अभी मैंने एक योग दिवस की टॉक में सुना था कि 20 मिनट आप बैठकर काम कीजिए और एक बार 8 मिनट के लिए आप थोड़ी सी वॉक करी आइए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए ठीक रहता है कि एक चेयर पर बैठ के लगातार काम करना भी ठीक नहीं है। ये भी योग है कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए काम के बीच बीच
0: जी, और अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो वहां पर भी आप छोटे छोटे जो व्यायाम है अपने शरीर के अंगों को खींचने वाले वो कर सकते हैं, ताकि आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, गर्दन से संबंधित जो समस्याएं वो ना हो।
1: बिल्कुल।

0: लव इन टोक्यो फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को. और रश्मि, आज हम पूछ रहे हैं, हमने अपनी ईमेल आईडी सबको दी है, किस लिए?
1: भाई सवाल पूछा था कि पहली सैलरी जब मिली तो आपने उसका क्या किया और आपको कैसा लगा.
0: और हमें बहुत सारे संदेश और ईमेल्स मिल रहे हैं. ये ईमेल है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से. लिखते हैं कि पहली सैलरी अपने माता पिता को देना बरकत होती है. इज्जत और पैसा कमाना मुश्किल है, कमा कर उसको संभाल कर रखना और भी मुश्किल है.
1: जी बिल्कुल. और एक और हमारे साथ संदेश हमें प्राप्त हुआ है. आप हैं विनोद गुड़गांव से. आप कह रहे हैं कि पहली सैलरी मिलते ही मैंने एटीएम से पैसे निकाले और कई मिनट तक उन नोटों को देखकर मुस्कुराता रहा. भाई वाह. और ये कहते हैं कि पहली सैलरी से पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर गया, घर का माहौल ही बदल गया. और वो जो स्क्रीनशॉट था ना, वो पहली सैलरी का, मैंने आज भी फोन में संभाल कर रखा है, क्योंकि वो सिर्फ रकम नहीं थी बल्कि मेहनत की एक पहचान थी. भाई वाह विनोद, ये तो बहुत अच्छा और नया बिल्कुल अनुभव है ना.
0: और इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है
1: जी,
0: क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सैलरी कहते हैं कि भाई अब पहली सैलरी कई बार सब अपने माता पिता को दे देते हैं. ज्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने माता पिता को. लेकिन एक बहन ने अभी पहले लिखा था कि उन्होंने बिजली का बिल भरा, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस था.
1: बिल्कुल. और देखो, सैलरी आप तभी कमाओगे अच्छी जब करियर अच्छा होगा. और करियर के कई सारे विकल्प हैं. एक विकल्प मेरे दिमाग में आ रहा है राधा, कि बायोटेक में करियर भी बहुत अच्छा किया जा सकता है.
0: जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसकी जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है. क्योंकि अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ चुके हैं
1: जी.
0: ये सिर्फ रिसर्च तक, क्योंकि पहले लगता था बायोटेक्नोलॉजी में इसने बीएससी करी है या कुछ किया है तो ये तो रिसर्च है. रिसर्च इसके अलावा भी इसका तकनीकी का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है.
1: भाई बहुत मांग तेजी से बढ़ रही है, चाहे अच्छी सेहत हो, कारगर दवाइयां हो, बढ़िया फसल तक बायोटेक्नोलॉजी की जो है जरूरत पड़ती है. और हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्री में नए विकल्प आ रहे हैं. ये क्षेत्र अब केवल रिसर्च तक सीमित नहीं है जैसा कि तुम बता रही थी, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ गया. और ये बिल्कुल शानदार अवसर है युवाओं के लिए और इसमें संभावनाएं अपरिमित संभावनाएं हैं.
0: हाँ, अगर आपने मतलब बायो ले रखी है 11th 12th में, चाहे होम साइंस के साथ लियो चाहे साइंस के साथ लियो, तो आप इसमें कृषि, फूड टेक, स्वास्थ्य, जैव आधारित तकनीकी में अगर रुचि भी हो तो आपके लिए क्षेत्र बिल्कुल बेस्ट है. क्योंकि इसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस आदि विषयों में 12वीं के बाद स्नातक स्तर यानी बीए की पढ़ाई कर सकते हैं.
1: और इसके अलावा इस क्षेत्र में शोध किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में काम किया जा सकता है, हेल्थ केयर में जुड़ सकते हैं. भाई कृषि में भी बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है. फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में जा सकते हैं. और भाई औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहां भी इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर है. तो हम तो ये कहेंगे कि चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों में जो अगर बायोटेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित हैं तो इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
0: बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और जीनोमिक्स के उपयोग से अनुसंधान और उत्पाद विकास की गति में बढ़ रहे हैं और इससे नए रोजगार और विशेषज्ञता के अवसर भी पैदा हो रहे हैं.
1: भाई आजकल हम आए दिन बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इसमें तो वैसे ही बहुत रोजगार है.
0: हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी को ऐसा मत सोचिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेझिझक आप इसमें करियर बना सकते हैं.

0: गीत हम सुन रहे थे काला सोना फिल्म से आशा भोसले और डैनी की आवाज। और आपके हाथ में मैं देख रही हूँ मेल है और आपके चेहरे की खुशी बता रही है
1: कि जी बड़ी खूबसूरत सा ये संदेश मेरे पास आया है। ये संदेश हमें भेजा है वैशाली से रश्मि ने। इन्होंने क्या किया, ये कहती है कि मैंने नौकरी शुरू की शादी के बाद, और जब पहली सैलरी मिलने का समय आया तो इन्होंने बैंक में बाकायदा खाता खोला जी, और अपने सपनों का खाता खोल दिया ऐसा लगा उन्हें। और वो कहती हैं कि मैंने, मेरे जो पति हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो कभी कभी जो उनमें से पैसे मिलते हैं तो मैं उनकी भी मदद करती हूँ। पहली सैलरी से मैंने एक पौधा खरीदा था, सोचा था जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा वैसे ही मेरी तरक्की भी बढ़ेगी। भाई वाह, कितना सुंदर विचार
0: और
1: है।
0: हाँ, सोच कितनी अच्छी है कि पौधा घर में लगाया कि ये पौधा भी बढ़ता जाएगा और मेरी तनख्वाह बढ़ती जाएगी या तरक्की घर में होती रहेगी। और वैसे भी हरियाली, पौधे जो होते हैं ना वो घर में हमेशा खुशहाली लेकर आते हैं।
1: और एक बहुत अच्छी बात, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गई आर्थिक रूप से, उन्होंने अपना खाता खुलवाया बैंक में और अपने पति की भी मदद की आर्थिक रूप से। भाई बिजनेस में कभी कभी पैसे की जरूरत भी पड़ती है
0: तो इससे पति पत्नी का

0: जो रिश्ता है ना कितना मजबूत हो गया होगा
1: जी, और भी मधुर हो गया होगा। लेकिन कभी कभी तो बहस भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा समय भी आता है पति पत्नी की बनती नहीं
0: क्योंकि
1: है ना।
0: पति पत्नी का जो रिश्ता होता है रश्मि, वो बहुत प्यारा होता है। कभी प्यार कभी तकरार, ये चलता ही रहता है। अब चाहे अनचाहे कहा सुनी बहसबाजी कई बार हो ही जाती है,
1: जी
0: और लेकिन कुछ देर बाद ही मामला शांत भी हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी कई बार तो कुछ ऐसी बातों पे अपने आपको लड़ता हुआ पाते हैं ना कि वो बिल्कुल बचकाना लगता है कि अरे हम लड़ क्यों रहे थे।
1: बिल्कुल सही बात
0: कई
1: है
0: बार सोच का अंतर होता है, कई बार होता है हम बातचीत नहीं कर पाते,
1: जी,
0: समस्या
1: बिल्कुल।
0: सुलझा नहीं पाते, कोई अपने भावों पर मतलब काबू नहीं रख पाते, एकदम से गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब
1: तो
0: बात बाद में समझ आती है, लगता है कि आप छोटी सी बात थी और
1: जी
0: हम लड़ रहे
1: बिल्कुल,
0: थे।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे आपको ये लगे कि आपकी जो बातें हैं वो सहमति ना हो मुद्दों पर, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं को नकारे नहीं, और गलती स्वीकार करना कोई इसमें कोई कमी नहीं आ जाती आपकी उसमें। और हम तो ये कहेंगे कि अगर आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि रिश्ता और भी मजबूत हो
0: मतलब
1: जाएगा।
0: गलती हो तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है।
1: बुराई नहीं है, आप दोनों सही हो सकते हैं, इस बात को समझना चाहिए, और बातचीत को सही और गलत इस चीज में उलझने नहीं देना
0: और एक
1: चाहिए।
0: दूसरे की कमियां कभी नहीं गिनानी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कमियां जो होती हैं हर रिश्ते में होती हैं, और भावनाएं जो होती हैं वो कमियों को गिनाने के लिए नहीं होती हैं।
1: जी बिल्कुल, और हम तो ये कहेंगे कि उस समय में थोड़ा सा एक गैप ले लें, है ना, ताकि आपका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाए, है ना, आपका जो नर्वस सिस्टम है, बीपी और जो धड़कने हैं वो नियंत्रित हो जाए, और आपका तनाव कम हो जाए, और एक अंतराल के बाद मुझे लगता है कि आप बेहतर बात तब कर पाएंगे।
0: और ऐसी भी जरूरत होती है कि जहाँ अगर आपको लगता है सॉरी बोलना है वहां सॉरी बोलिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाले की तारीफ की जा सकती है तो एक दूसरे की तारीफ कीजिए,
1: जी बिल्कुल
0: वो बहुत
1: बिल्कुल,
0: जरूरी है,
1: हाँ
0: ताकि सामने वाले को भी खुशी हो, चाहे पति हो या पत्नी। मतलब तारीफ तो सुनना सबको ही अच्छा लगता है।
1: जी बिल्कुल, अगर आप एक छोटी सी तारीफ कर दें भी खाना बहुत अच्छा बना है, तो विश्वास कीजिए आपकी पत्नी जो है और प्रेम से और मेहनत से, भाई सारी पत्नियां बड़ी मेहनत से घर की सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, पर एक अगर छोटी सी तारीफ अगर आप कर दें तो विश्वास कीजिए इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, और जो प्रसन्नता है वो मुफ्त में चली आती है।
0: हाँ, और आदर का भाव भी एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है
1: और ऐसी पत्नी को भी सोचना चाहिए भाई दिन
0: कि
1: भर
0: आज
1: का
0: आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
1: और जो मेहनत करके जब व्यक्ति घर पे आए तो थोड़ा सा उसे शांत होकर बैठने दे, और फिर अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते
0: क्योंकि
1: हैं।
0: जो जिंदगी का सफर है उन्हें एक साथ ही तो काटना है।
1: जी बिल्कुल।

0: और एक और मेल प्राप्त हुई है, आप हैं राजू अग्रवाल चौधरी वास हरियाणा से, आप कह रहे हैं कि जब मैं पहली सैलरी लेकर आए तो एक पुस्तक खरीदी थी, घर वाले खुश हुए। अब मेरे दोस्त के लड़के की ड्यूटी जो है वो आकाशवाणी हिसार में चल रही है, तो मेरे दोस्त ने भी खुशी में के मौके पर पार्टी रखी, खुशी मनाई और पंचमुखी मंदिर में दर्शन भी किए। आप हैं मंटू शर्मा और रोहित वशिष्ठ जो हैं वो जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं अमृतसर से मोबाइल ऐप पर ये सुन रहे हैं और कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा राधा पंकज बिंदल जो हैं वो कह रहे हैं जब पहली सैलरी मिली तो सत्संग के काम में लगाई। आप हैं काम चौधरी वास हिसार से पंकज अग्रवाल, राजू अग्रवाल, केशव।
1: और आप सुन रहे हैं गीत मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।
0: हम समेट रहे हैं ये
1: कार्यक्रम को, तो कार्यक्रम घर आंगन से राधा पाठक
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। इसी के साथ हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट रिया प्रकाश। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे उस फिल्म का नाम है खिलौना। जी हाँ, खिलौना 1970 में बनी भारतीय हिंदी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार ड्रामा फिल्म है। एलवी प्रसाद द्वारा निर्मित और चंदन बोहरा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार संजीव कुमार विजय कमल के किरदार में हैं, मुमताज चांद के किरदार में हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी के किरदार में हैं और जितेंद्र मोहन की भूमिका में शामिल हैं। आगे इस फिल्म से जुड़ी हम आपको और भी जानकारियां देंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म खिलौना बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट तो साबित हुई ही, साथ ही फिल्म का संगीत बेहद सफल रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिल के करीब हैं। और 1971 में 18वें फिल्मफेयर पुरस्कारों को कुछ 6 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से इसने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मुमताज ने पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य नामांकन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संजीव कुमार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता जगदीप, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए गुलशन नंदा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए मोहम्मद रफी भी नॉमिनेटेड रहे।

0: खुश रहे।
1: तो हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता अभिनव कुमार, गौरव कुमार और प्रणव कुमार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समडील नवापाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सचित, कुमार प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वर्थ, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षिता।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मैं हूं आपके साथ रिया प्रकाश। श्रोताओं, फिल्म खिलौना अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रेम पर आधारित अपने शानदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और सदाबहार संगीत के लिए जानी जाती है। श्रोताओं, फिल्म की कहानी विजय कमल यानी संजीव कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी प्रेमिका की मौत के सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठता है। उसके परिवार वाले उसे ठीक करने की उम्मीद में एक युवा वेश्या चांद यानी मुमताज को उसकी पत्नी का नाटक करने के लिए घर लाते हैं। विजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसे चांद से प्रेम हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही विजय कमल चांद को भूल जाता है। इसी बीच ये पता चलता है कि चांद विजय कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर विजय कमल के परिवार वाले चांद को धुतकारते हैं, पर अंत में परिवार वाले उसे अपना लेते हैं।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन
0: Oh yes, September 8
1: Oh, very late
0: Darling

0: बुलबुल।
1: सच है बिल्कुल,
0: तू है बुलबुल।
1: सच है बिल्कुल, यू आर वंडरफुल।
0: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छ छम छ छम, ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है। रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है। रोज

हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये है शांति नगर सोनीपत से। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठन से हमारे साथ जुड़े हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। SSCL कॉलोनी कोरबा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता सीमा राव और के राव। श्रोताओं, फिल्म खिलौना गुलशन नंदा की उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। फिल्म की कहानी को सबसे पहले गुरुदत्त को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन वो के आसिफ की फिल्म लव और गॉड में बहुत व्यस्त थे और गुरुदत्त के निधन के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर फिल्म चंदन बोहरा ने बनाई। इस फिल्म के लिए संजीव कुमार को मुख्य किरदार के लिए चुना गया। फिल्म में जो किरदार मुमताज ने निभाया है उसे उस किरदार के लिए सबसे पहले शर्मिला टैगोर और वहीदा रहमान को चुना गया था।

संदेश आया है फजिल का पंजाब से। भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विष्णु खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी टुआंशी खेड़ा और वाणी खेड़ा। मेरठ कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़। छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। छत्तीसगढ़ चूरी लाइन मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अफसाफ, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। धनौरी तिलीवाला उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। श्रोताओं, खिलौना फिल्म की कुल कमाई बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ की हुई थी, जिससे पता चलता है कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी। और इस फिल्म में कलाकारों ने जो अभिनय किया है वो काफी सराहनीय था। श्रोताओं, यह फिल्म खिलौना 1963 में बनी तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म का रीमेक था और साथ ही इसे तमिल और मलयालम भाषा में भी बनाया गया है।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियां ते मजबूत ब्रिक्स सहयोग दा सदा दित्ता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का कहना है कि COVID-19 दहशतगर्दी ते अत दियां जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नूं प्राप्त दान विच कथित माली बेनेमियां दी अदालत दी निगरानी हेठ जांच दी मंग करन वाली जनहित अर्जी दी तुरंत सुनवाई करन तों इनकार कर दित्ता है। वेनेजुएला च जोरदार भूचालां नाल तबाही, 32 मौतां ते 700 तों वध लोक जख्मी ते भारत दे दखल तों बाद पैरिस विच चंडीगढ़ दे विरासती फर्नीचर दी नीलामी रोकी गई। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ऊर्जा प्रणालियां दे निर्माण लई ब्रिक्स सहयोग नूं मजबूत करना चाहुंदा है। गुरुग्राम विच 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियां दी मीटिंग दा उद्घाटन करदिआं उन्हां कहा कि विकास दीआं इच्छावां ते निरंतर रहणयोग विकास टीचिआं नूं प्राप्त करन लई किफायती, भरोसेमंद ते निरंतर रहणयोग ऊर्जा जरूरी है। समुची ऊर्जा मुल लड़ी विच भारत दे निवेशां नूं उजागर करदे होए उन्हां कहा कि भारत दुनिया दीआं सब तों वड्डीआं डिजिटल तौर ते समर्थ बिजली प्रणालियां विचों इक दी नीं रख रिहा है। उन्हें कहा कि 6 करोड़ तों वध स्मार्ट मीटर पहला ही लाए जा चुके ने अते तब्दीली आने वाले सालों विच वड्डे पद्धर ते जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया हथियारां दी वधदी वरतों जोखम लैण दी प्रवृत्ति च वाधे ते सोशल मीडिया संचालित राजनीति नूं देख रही है। दक्षिणी कोरिया दे जेजू टापू ते शांति ते खुशहाली ते एक कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विलक्खणता दा दावा करन दा अते समर्थावां दी वरतों करन विच घट झिझकदा रुझान वधेरे है। उन्हें कहा कि COVID-19 दहशतगर्दी जां अत दीआं जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन लई अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि प्रभावशाली देशों विचकार नवी समझ अते नजदीकी संबंध बनाउण नाल विश्व व्यवस्था नूं स्थिर करन अते खास एजेंडिया ते सहयोग राही समस्यावां दा हल करन विच मदद मिलेगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ते दक्षिणी कोरिया जहाज निर्माण, डिजिटल, सेहत, बुनियादी ढांचा जां रक्षा वर्गे खेतरां विच सहयोग कर सकदे ने। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नूं प्राप्त दान विच कथित माली बेनेमियां दी अदालत दी निगरानी हेठ जांच दी मंग करन वाली जनहित अर्जी PIL दी तुरंत सुनवाई तों इनकार कर दित्ता है। हालांकि अदालत ने पटीशनर नूं भरोसा दित्ता है कि मामला टुकवे समय ते सूचीबद्ध कीता जाएगा। पटीशनर एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने जस्टिस VV नागरत्ना अते जॉय माल्या बागची दे बेंच नूं दस्सिया कि उन्हां दी पटीशन अहम सबूतां नूं सुरक्षित करन लई तुरंत सूचीबद्ध करन तक सीमित है। पटीशन विच अयोध्या दे राम मंदिर विच दान अते भेटा नाल संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड अते होर सबूतां दी संभाल दी मांग कीती गई है। इह ट्रस्ट वल्लों प्राप्त दान दी पूरी जांच ते मंदिर फंडां दे प्रबंध विच वधेरे पारदर्शिता दी भी मांग करती है। पटीशन विच कथित माली बेनेमियां दस्से करे अते उत्तर प्रदेश सरकार वल्लों गठित विशेष जांच टीम SIT वल्लों चल रही जांच दा हवाला दित्ता गया है। पटीशनर ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ दान दे प्रबंधन नाल संबंधित है अते धार्मिक रवायतां विच दखलअंदाजी दी मांग नहीं करता है। इस दौरान लखनऊ डिवीजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगवाई वाली 3 मैंबरी विशेष जांच टीम ने हाल ही विच राज सरकार नूं अपनी मुढ़ली रिपोर्ट सौंप दित्ती है। मंदिर दे फंडां दे कथित गबन दी वेरवे सहित जांच अजे भी जारी है। अज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह उस दिन की याद दवाउंदा है जदों 25 जून 1975 भारत के संविधान नूं कुचलिया गया सी।

0: ਅਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਕਸ਼ੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਾਲੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। नायब सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तार का दिफा किया। वजीर खारजा डॉ एच जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इकतसादी और तजारती माहदे के निफाज से पहले बरतानिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। भारत ने तवानाई के शोबे में मजीद ब्रिक्स शराकतदारी पर जोर दिया है। वेनेजुएला में ताकतवर जलजलों में 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। वेनेजुएला की सदर ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। और फीफा आलमी कप में मोंटेरे में जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफिशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आइन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था क्योंकि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफुजात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजुई करने के हक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आजादी की तहफुज का एक कानूनी इदारा है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार के दिफा में साबित कदम रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर एक बराह रास्त हमला था। उन्होंने कहा कि उस अरसे में सिविल आजादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आजादी को खत्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफियों और समाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। वजीर आजम ने कहा कि इमरजेंसी ने उन बेशुमार शहरियों के गैरमामूली हौसले को भी उजागर किया था जिन्होंने खामोश रहने से इनकार किया था और वो आईन में दर्ज नजरियात की खातिर डटे रहे। जनाब मोदी ने कहा कि आईन 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों, हुकूक और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ्फुज़ की खातिर मुसलसल अहदबस्ता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का मकसद इस स्याह बाब की मुल्क की यादों को जिंदा रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में कभी फिर जमहूरियत और आईन पर ऐसा हमला न कर पाए।

0: Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
4: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को

0: संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
1: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे

0: में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं।

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दोपहर के 2:30:19 हो रहे हैं। समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत सभी सुनने वाले श्रोताओं का एक ही कलाकार कार्यक्रम के इस सफर में। आज हैं आप मेरे यानी मनीषा के साथ और आज होगा ये सफर तय मेरे साथ। तो सभी लिसनर्स को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार में बात आज हिंदी फिल्म संगीत की उस सुनहरे दौर की होगी जहां संगीत और संगीत की धुन बनती नहीं बल्कि अनुभूतियों में जी जाती थी। आज का कार्यक्रम समर्पित है ऐसे ही संगीतकार को जिनकी धुनों में दर्द था, मोहब्बत थी, शायरी थी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहराई भी।

जी हाँ, उस भूली दास्तां को आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज एक ही कलाकार में हमारे वो कलाकार हैं जिनकी जयंती भी है आज, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो कलाकार एक महान संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन के नाम से जाने जाते रहे हैं। उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन तो करते हैं और साथ ही साथ उनके उन गीतों के दौर में फिर से जीते हैं अपने उन लम्हों को, अपने उन एहसासों को। जी हाँ, 1924 में 25 जून को जन्मे मदन मोहन जी 1950 से 1975 के बीच लगभग 100 फिल्मों में मधुर और कालजयी संगीत देते रहे और ऐसी अमर धुन रचते रहे जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।

दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। उनके पिता राय बहादुर चन्नीलाल उस समय मध्य पूर्व में कार्यरत थे। उनकी

कवियत्री थी और उन्हीं से ही मदन मोहन जी को संगीत और साहित्य की गहरी समझ विरासत में मिली। दिलचस्प बात यह है कि उनके जीवन की उन्होंने कुछ समय सेना में भी काम किया, फिर अपने जीवन काल में वे आकाशवाणी लखनऊ से भी जुड़े, जहां उन्हें उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों को

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे साथ इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं उस महान संगीतकार की जो गजलों के बेताज बादशाह कहे जाते थे। उनकी जो गजलें हैं उसका जो दौर है वो कभी थमा ही नहीं दोस्तों। आज भी उनके संगीत को चाहने वाले बहुत से दीवाने बैठे हुए हैं। हम उनकी बातें करेंगे और भी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक आप सभी का, आप है आपके अपने रेडियो चैनल आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ में। और साथियों, आपके मेल, आपके संदेश, जिनकी प्रतीक्षा हमें होती है, हमें पता है आप अपने कार्यक्रम को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो श्रोता साथी नए हैं, उनके लिए हम बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार, जो हिंदी फिल्म जगत के महान

संगीतकार कहे गए मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी आज जयंती है। तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहें, अपने संदेश और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया हमें बताते रहें ipradiodelhi@gmail.com पर। और दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ कि 1950 में जब मदन मोहन मालवीय जी ने आँखें फिल्म से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की, तो मदन मोहन जी को सफलता का रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिला। जिस दौर में नौशाद, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे दिग्गज और स्थापित कलाकार वहां थे, उनके बीच मदन मोहन ने किसी की कॉपी ना करते हुए अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसी पहचान जहां दर्द भी था और नजाकत भी।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ipradiodelhi@gmail.com के संदेशों के लिए, और हमारे पास बहुत सारे संदेश आ चुके हैं हमारे श्रोता साथियों के, जिन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और इनमें हमारे श्रोता साथी हैं फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से, फैजी फराज फरहीन और फारिया और ताहिरा इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो हैं हमारे साथ चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।

तरह धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और उन्होंने कार्यक्रम को बहुत सराहा है जी, बहुत शुक्रिया। उन्हें मदन मोहन जी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो बहुत अच्छी लग रही है। ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को इतने गौर से सुनते हैं और हमारे हौसले को आप बढ़ाते हैं। गांव नधाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जी, बहुत शुक्रिया। हमारे कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं, हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे कार्यक्रम को करने का कोई तो मकसद पूरा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कबीर रेडियो रेडियो श्रोता संघ से डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देवी देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, उनके साथ राधिका प्रभा देवी तामूरिया, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुलसी मस्कीन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह, और खूबसूरत गीतों के लिए वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं जी। आपका धन्यवाद इन गीतों को ध्यान से सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ हैं अमर रमेश कुमार खत्री, और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। ये कराची से हैं, और आपका शुक्रिया। इतनी दूर से जब हमसे हमारे श्रोता साथी जुड़ते हैं तो सच में हमें लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद पूरा हुआ। और देखिए, हम आपके नाम लेते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज है उनकी जयंती जिन्होंने हमें खूबसूरत संगीत का तोहफा दिया हिंदी फिल्म जगत में। तो आइए सुनते हैं हम उनके एक और खूबसूरत से गीत को।

साथियों, अगर हिंदी फिल्म संगीत की खूबसूरत जोड़ियों की बात करें तो उसमें लता मंगेशकर और मदन मोहन जी का जिक्र लाजमी है। लता जी ने स्वयं कई अवसरों पर कहा कि मदन मोहन की धुन पर गाना उनके लिए एक विशेष अनुभव है। दोनों की जोड़ी ने कई कालजयी गीत दिए, जिनमें लग जा गले, नैना बरसे, आपकी नजरों ने समझा, वैया ना धरो, नैना में बदरा छाए, दिल ढूंढता है और वो भूली दास्तां जैसे बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं जो हमारे दिलों में आज भी बसे हुए हैं। मदन मोहन साहब को गजल किंग यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि फिल्म संगीत में गजल को एक नया मकाम उन्होंने दिलाया। उस दौर में जब दूसरे संगीतकार तेज और लोकप्रिय धुनों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं मदन मोहन जी ने शब्दों की आत्मा को संगीत में उतारने का प्रयास किया। उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत और मखमली भावनाओं का अनूठा संगम बनाया। आज भी संगीत के विद्यार्थी उनकी कंपोजिशंस का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इतने महान संगीतकार होने के बावजूद मदन मोहन जी अपने जीवन काल में उतने पुरस्कार नहीं पा सके जिनके वो वास्तव में हकदार थे। समय की सीमाओं से परे धुन रचने वाले संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि पहले था।

तो दोस्तों, संगीत के उस जादूगर का सफर जिसने दर्द के सुरों में अपने आप को पिरोकर अमर कर दिया, आज के कार्यक्रम एक ही कलाकार में संगीतकार और गजल सम्राट मदन मोहन जी की जीवन से जुड़ी बातें सुनी आते हैं। अब आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा बोस को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब बखैर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3 बजा हुआ है और अब समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का।

दोस्तों, हम खोल रहे हैं वो पिटारा यादों का अपने कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज में। जी हाँ, बात करेंगे उस समय की जब धुन एक कहानी थी, हर बोल एक एहसास हुआ करता था। बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की, जब गाने सिर्फ सुने नहीं जिए जाते थे।

जी हाँ, मैटनी मेलोडीज, जिसमें आप सुन रहे हैं गोल्डन एरा के वो सुपर डुपर हिट गीत जिन्हें आज भी हम अपने दिलों में महसूस करते हैं उन एहसासों के साथ। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब मदन मोहन साहब जी 1964 में लता जी के साथ उनकी आवाज़ में दर्द को महसूस करते हुए ऐसे पिरोते थे जैसे 60 साल बाद भी वो वैसे ही महसूस हो रहे हैं। आंख बंद करने से ऐसा लगता है जैसे वो दौर, वो एहसास हम आज भी जी रहे हैं। और ऐसे ही दौर को जीते हुए इतनी दूर निकल आए ऐसे मेलोडी क्वीन के साथ मदन मोहन साहब ने एक से बढ़कर एक संगीत दिए। और ऐसा लगता था उस दौर में जैसे ऑर्केस्ट्रा में 100 वादक एक साथ बज रहे हों। तो चलिए सुनते हैं उनके संगीत से सजा हुआ उस दौर के गीत को।

भावनाओं को खूबसूरती से पिरोना उस दौर में बखूबी आता था। वो एहसास जिसे हर कोई अपने दिल के पास महसूस करता था, जब भी गीत सुनते थे संगीत की धुनों में ऐसा लगता था जैसे हम अपने ही एहसास को महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, हम सुन रहे हैं गोल्डन एरा के वो गीत मैटिनी मेलोडीज में, जो हमारे कार्यक्रम में आपकी पसंद के गीतों को लेकर आए हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं उस दौर के गोल्डन एरा के गीतों की दोस्तों, जिसे सुनकर कभी भी हम बोरियत नहीं महसूस करते। जब भी सुनो हर बार लगता है कि वो गीत हैं और वो गीत नए हैं, अपने एहसासों के साथ हूबहू मेल खाते हुए। तो चलिए ऐसे ही एक एहसास से सजा हुआ एक और खूबसूरत सा गोल्डन एरा का ये गीत आपके लिए।

मैटनी मेलोडीज में गोल्डन एरा के उन गीतों को आप सुन रहे हैं मेरे यानी मनीषा के साथ, और हम याद करते हैं उस दौर को, उस श्वेत और श्याम के दौर को, ब्लैक एंड वाइट के दौर को, जहां आंखों ही आंखों में बातें हो जाया करती थी और दिल धड़कने लगते थे, है ना। सदाबहार गीतों की ऐसी महक उस समय होती थी जिन्हें सुनते ही सभी का दिल ताज़ा हो जाता था, सभी के दिन बन जाते थे। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और खूबसूरत सा गीत, हम, ये है फिल्म 420 से।

दोस्तों, श्री 420 से आप लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में सुन रहे थे इस खूबसूरत से नगमे को। और आपको पता ही होगा कि आप अभी सुन रहे हैं हमारे साथ गोल्डन एरा फिल्मी संगीत मैटनी मेलोडीज में आपके अपने रेडियो कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपके संदेश की प्रतीक्षा अभी भी है हमें ipradiodelhi@gmail.com पर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें बताइएगा जरूर। और दोस्तों, गोल्डन एरा के जो गीत होते थे वो गीत सिर्फ धुनों से नहीं बनते थे, अल्फाजों की खुशबू से बसे होते थे, है ना। साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे शायरों की कलम से उनके गीत निकलते थे जो जिंदगी के हर फलसफे को बयां करते जाते थे। तो चलिए, ऐसा ही जिंदगी के फलसफे से सजा हुआ एक और खूबसूरत सा नगमा आपके लिए।

साथियों, आपका अपना कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत का मैटनी मेलोडी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ, और हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिसमें हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन मुखी जी, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कार्यक्रम को इतने गौर से सुनने के लिए, और संतोष कुमार सोनार, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रथ चौक, बहादुरपुर, खानदेश, महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे श्रोता साथी हैं ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश, और पूरा का पूरा उनका बघेल परिवार। और हमारे साथ इसी तरह और भी श्रोता साथी हैं, जिसमें से ये हैं पंकज शर्मा जी, इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम को सराहने के लिए। मीरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं, उन्हें कार्यक्रम और जानकारी अच्छी लग रही है। और वैसे भी अगर देखा जाए साथियों, तो ये जो पुराने गीत होते हैं, फिल्म संगीत होते हैं, ये जीवन को उस धारा में ले जाते हैं जहां हम जितने भी उदास हों, निराश हों, वो आशाओं की एक लड़ी

पिरो देते हैं, क्योंकि पुराना दौर सिर्फ नगमों का नहीं जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का भी नाम बन जाता था, और आज भी है दोस्तों। किशोर कुमार की वो मस्ती भरी पुकार याद है जो हर उदासी को दूर भगा देती थी। जब जिंदगी की राहों में कोई भी गीत गुनगुनाने का मन करे तो ऐसे ही सदाबहार गीत हमें याद आते हैं आज भी, और वो खुशनुमा मौसम हमारे सामने फिर से जिंदा हो जाता है। चलिए वो गीत आपको फिर सुनाती हूँ।

साथियों, गीत और संगीत अमर हो जाते हैं, उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। पुराने नगमे महज गाने नहीं होते थे, बल्कि वो आईने की तरह हमारे साथ हमारे बीते कल को हमारे सामने रख देते हैं। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ आज अपनी दोस्त अपनी होस्ट को मैटनी मेलोडीज से दीजिए अनुमति। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिर मिलेंगे किसी और सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज। कुछ देर में आप समाचार

听众朋友们，请继续收听听一部电影的虽然故事很长的一首歌曲。

听众朋友们，请继续收听同一部电影的西文巴特唱的一首歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे फीफा विश्व कप की, जहां रोमांच की दनादन किक लग रही है और पुराने सितारों के साथ युवा खिलाड़ी भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी अभिषेक कपिल।
2: नमस्कार श्रोताओं।
1: और अभिषेक, आज जो फीफा विश्व कप के अलावा बात भुवनेश्वर में चल रही अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स की भी होगी, जहां एथलीट शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ना केवल अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि एशियाई खेलों का टिकट भी हासिल कर रहे हैं, उसके क्वालिफाइंग मार्क को पार करके अपना एक शानदार तैयारियों का भी संकेत दे रहे हैं। बात इसके अलावा FIH प्रो लीग की भी होगी, बात जूनियर विश्व कप की भी होगी जो कि जर्मनी में चल रहा है। इसके अलावा ABC नेशन कप अहमदाबाद में आज मुकाबला है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां टीम लगातार 4 जीत हासिल कर चुकी है। तो क्यों ना आज के जो खेल पिटारे की शुरुआत फीफा विश्व कप से करें, जहां ABC यानी कि 3 ग्रुप जो हैं उनके ग्रुप दौर समाप्त हो चुका है और राउंड ऑफ 32 में टीमों ने जगह बना ली है। फीफा विश्व कप में नॉकआउट दौर की रेस अब तेज हो चुकी है। 12 टीमें अगले दौर का टिकट कटा चुकी हैं, बाकी दावेदार भी अपनी उम्मीदों को दमदार बनाने में लगे हैं। अभी तक कुल 12 टीमें दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, जिनमें सह मेजबान मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के अलावा पूर्व चैंपियन अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया शामिल हैं। विश्व कप में कुल 32 टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी, जिनमें 12 ग्रुपों की शीर्ष 2 टीमों के अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली श्रेष्ठ 8 टीमें शामिल हैं। सबसे पहले बात ग्रुप सी की। 5 बार की चैंपियन ब्राजील के मुरीदों की कमी नहीं है। ग्रुप सी में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया और फिलहाल मुरीदों की मुराद पूरी कर दी। जीत के हीरो विनिसियस जूनियर रहे, जिन्होंने 2 गोल किए। उन्होंने 7वें ही मिनट में गोल कर स्कॉटलैंड को दबाव में ला दिया था। दरअसल इस बार ब्राजील की उम्मीदें विनिसियस जूनियर पर काफी टिकी हैं, जिन्होंने ग्रुप दौर में टीम के 3 मैचों में गोल किया है। अब उनके इस बार 4 गोल हो गए हैं। फ्रांस के मबापे और नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड के भी 4-4 गोल हैं। मेसी अब तक सर्वाधिक 5 गोल कर चुके हैं। ब्राजील का पहला गोल रक्षक खिलाड़ी की गलती से हुआ, वह गेंद को क्लियर नहीं कर पाए और गेंद चिटक कर रियान के पास पहुंची, जिन्होंने अकेले मौके की ताक में खड़े विनिसियस को गेंद सरका दी, जिन्होंने बिना मौका गंवाए आसानी से गोल कर दिया।
3: They'd be very unlucky not to go through with 4. Oh, and a little bit of an error there. And Vinicius Jr. couldn't miss. Scotland have gifted Brazil the opening goal of the match, and it hasn't.

0: गोल के समय मध्यांतर से ठीक पहले विनिसियस का हेडर दमदार था। गेंद गोल पोस्ट के नेट में जाकर टकराई और ब्राजीली समर्थकों का शोर गूंज उठा।
1: Vini Jr. back, it's off the line by Patterson. Guimaraes again, it's above, gone, and Vini Jr. is there to head it home at the far post.
0: टीम का तीसरा गोल 60वें मिनट मैथियस कुन्हा ने किया। टीम के स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर टीम के पहले दो मैचों में नहीं खेले थे, उनकी पिंडली में चोट थी, लेकिन कोच कार्लो एंसेलोटी ने इस मैच में उन्हें 76वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतारा। नेमार ब्राजील की जर्सी में लगभग 3 साल के बाद पहली बार उतरे हैं। इससे पहले उन्होंने ब्राजील के लिए अक्टूबर 2023 में मैच खेला था।
1: Here's a moment many Brazilian fans have been waiting for, but for the first time in a long time, Neymar takes to the field for the Seleção.
0: ब्राजील की टीम ग्रुप सी में 7 अंक लेकर टॉप पर रही। ग्रुप सी के अन्य मुकाबले में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराया। मध्यांतर के समय दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थी। इस जीत से मोरक्को ग्रुप में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर रहकर नॉकआउट में पहुंची। मोरक्को के लिए अशरफ हकीमी, इस्माइल सेवेरी ने पहले 2 गोल किए। दूसरे हाफ में सोफीने रहीमी और गैसेमी यासिनी के गोल से अफ्रीकी मोरक्को टीम की जीत सुनिश्चित हो गई।
2: Sabari waiting for it. Oh, and he's put it wide. It's the movement again. Oh, flicked on Rahimi with the touch and in. Sofyan Rahimi.
0: हैती का पहला गोल 10वें मिनट में उपहार के रूप में मिला, जब बोनोयू से आत्मघाती गोल हो गया। उसके बाद विलियम इसिडोर ने 43वें मिनट में गोल किया, जो 52 साल में हैती का विश्व कप में पहला गोल रहा।
2: Oh my goodness! Oh wow! Wilson Isidore!
0: ग्रुप ए के मुकाबलों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से पराजित कर दिया। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में थेपेलो मेस्को ने किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में प्रवेश करने में सफल रही। उधर एशियाई टीम दक्षिण कोरिया ग्रुप में 3rd स्थान पर रही। अब उसे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के लिए अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। ग्रुप मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराया। मध्यांतर तक दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन कोई टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी थी। दूसरे हाफ में मेक्सिको ने 3 गोल करके चेक गणराज्य को विश्व कप से बाहर कर दिया। मेक्सिको के शावेज ने 55वें मिनट में खाता खोला। 6 मिनट बाद क्विनोनस ने मेक्सिको की बढ़त 2-0 कर दी। जब ऐसा लग रहा था कि 2-0 की स्कोर लाइन पर ही मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्टॉपेज टाइम के 4th मिनट में फिडाल्गो ने 3rd गोल भी कर दिया। मेक्सिको की यह ग्रुप में लगातार 3री जीत रही। इससे पहले मोरक्को ने दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को हराया था। इस मैच में मेक्सिको ने युवा फुटबॉलर मोरा को उतारा। महज 17 साल 253 दिन के मोरा फीफा विश्व कप में खेलने वाले मेक्सिको के सबसे युवा और दुनिया के 6ठे युवा खिलाड़ी बन गए। मिडफील्ड में उनके खेल की झलक ने भविष्य में एक अच्छे फुटबॉलर की उम्मीद जगाई है। इस मैच में मेक्सिको ने अपने 40 साल के गोलकीपर गुलेर्मो ओचावा को भी मैदान में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में 78वें मिनट में उतारा। गुलेर्मो का ये 6ठा विश्व कप है और उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। दरअसल मेक्सिको के कोच जेवियर एक्वायर ने उन्हें मैच के अंत में उतारकर सम्मान प्रदान किया। प्रशंसकों ने भी उनका खड़े होकर अभिवादन किया। यह खेल और खेल भावना का अभिनंदन था। ग्रुप बी में पिछले 24 घंटे में 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर के खिलाफ 3-1 की जीत दर्ज करके नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड ने सह मेजबान कनाडा को 2-1 से पराजित कर दिया। बोस्निया हर्जेगोविना की जीत में 18 साल के करीम अलाज बेगोविच और स्थानापन्न खिलाड़ी महमिक ने गोल किए, जबकि एक गोल कतर के सुल्तान अलब्रेक का आत्मघाती रहा। कतर का एकमात्र गोल हसन अल हमदोस ने किया। बोस्निया हर्जेगोविना का भविष्य अब ग्रुप चरण के बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगा। बोस्निया इससे पहले 2014 विश्व कप में खेला था, लेकिन ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सका था। बोस्निया हर्जेगोविना के 3 मैचों में 4 अंक हुए और वह ग्रुप बी में 3rd स्थान पर है। कतर 3 मैचों में 1 अंक ही ले पाया और रेस से बाहर हो गया। ग्रुप बी के अन्य मुकाबले में कनाडा की टीम स्विट्जरलैंड से 1-2 से हारने के बावजूद नॉकआउट में पहुंच गई। स्विट्जरलैंड के लिए दोनों गोल दूसरे हाफ के 12वें मिनट के अंदर रुबेन बारगेज और जोहान मंजाबी ने किए।
2: It comes all the way through. Vargas with time to take a touch.
3: Switzerland have come to spoil.

0: party. At the other end though, Switzerland with Mbolo. Manzambi to try and finish it off, and he does! It creeps under Crepo. This is a blistering start to the second half for Switzerland.
1: कनाडा दूसरे स्थान पर रहते हुए पहली बार नॉकआउट में पहुंचने में सफल रही। कनाडा ने 3 मैचों में 1 जीता, 1 हारा और 1 ड्रॉ खेला। उसके बोस्निया हर्जेगोविना के समान 4 अंक थे, लेकिन बेहतर गोल अंतराल कनाडा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। अब बिल्कुल रोमांच अपने शिखर पर है और देर रात तक इन फुटबॉल मैचों का लुत्फ लेना अभिषेक दरअसल बहुत ही एक शानदार अनुभव रहता है। और जिस तरह के मैच देख रहे हैं, जिस तरह के सितारे यहां पर, बात आप मेसी की करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करें, बाद एम्बापे की करें या फिर युवा अर्लिंग हॉलैंड की करें, सभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जिस तरह के गोल हुए हैं, अभी तक 54 मैच हो चुके हैं, 104 मैच होने हैं, 19 जुलाई को फाइनल है, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो सर्वाधिक गोलों का रिकॉर्ड जो पिछले में कतर में बना था 172 गोलों का, वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इस बार 54 मैचों में 161 गोल हो चुके हैं। और ये एक शानदार फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक भेंट है, एक शानदार एक अनुभव है। तो बहरहाल आज जो मैच होने हैं अभिषेक, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
2: फीफा विश्व कप 2026 में आइए जानते हैं आज के 6 महत्वपूर्ण मुकाबलों का प्रीव्यू। ग्रुप ई में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। कुरासाओ की टीम अपने जुझारू खेल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब तक 2 मैचों में उसे सिर्फ 1 अंक मिला है। जर्मनी के खिलाफ उसे 1-7 की हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इक्वाडोर के खिलाफ उसने गोल रहित ड्रॉ खेला। दूसरी ओर आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया और जर्मनी के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। कुरासाओ की उम्मीदें जुनिन्हो कुना और कुइको मार्टिना पर रहेंगी, जबकि आइवरी कोस्ट के लिए सेबेस्टियन हालेर और सिमोन अंद्रिगा अहम खिलाड़ी होंगे। अनुभव और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए आइवरी कोस्ट का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। आज के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक है इक्वाडोर और जर्मनी का मैच। जर्मनी शानदार फॉर्म में है और 2 मैचों में 9 गोल दाग चुका है। उसने कुरासाओ को 7-1 और आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया है। दूसरी ओर इक्वाडोर अब तक गोल करने में सफल नहीं हो पाया है और उसके खाते में सिर्फ 1 अंक है। इक्वाडोर की उम्मीदें एनेर वेलेंसिया और मोइसेस केइसेडो पर टिकी होंगी, जबकि जर्मनी के लिए जमाल मुसियाला, फ्लोरियन विर्ट्ज और काई हैवर्ड्स पर नजर रहेंगी। जर्मनी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इक्वाडोर काउंटर अटैक करने से खतरा पैदा कर सकता है। ग्रुप एफ में टूनिशिया का सामना नीदरलैंड से होगा। टूनिशिया

के बीच मुकाबला आज के सबसे दिलचस्प मैचों में से एक माना जा रहा है। जापान ने पिछले मैच में ट्यूनिशिया को 4-0 से हराकर शानदार फॉर्म दिखाई थी। जापान के पास 4 अंक हैं, जबकि स्वीडन के 3 अंक हैं। जापान के लिए ताकेफुसा कुबो, काउरो मितोमा और दाइची कामादा अहम खिलाड़ी होंगे। वहीं स्वीडन की उम्मीदें अलेक्जेंडर इसाक और डिजान पर रहेंगी। दोनों टीमों ने अब तक 6-6 गोल किए हैं, इसलिए दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। ग्रुप डी में तुर्की और अमेरिका आमने सामने होंगे। अमेरिका ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं और अब तक 6 गोल किए हैं। उसने पैराग्वे को 4-1 और ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। क्रिश्चियन पुलिसिक, वेस्टन मैकेकिनी और टिमोथी वेया अमेरिकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर तुर्की अभी तक गोल का खाता नहीं खोल पाया है। हाकान चालहनोग्लू और युवा स्टार आर्दा गुलर से तुर्की को बड़ी उम्मीदें होंगी। अमेरिका का आत्मविश्वास इस समय काफी ऊंचा है। दिन के अंतिम मुकाबले में पैराग्वे का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमों के 3-3 अंक हैं और ये मुकाबला नॉकआउट में काफी अहम माना जा रहा है। पैराग्वे ने तुर्कियों को हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी तुर्की के खिलाफ जीत दर्ज की थी। पैराग्वे के खिलाफ मिगुएल अल्मिरोन और जूलिया एनसिसो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कप्तान मैथ्यू रयान और जैक्सन इरविन पर टिकी होंगी। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो श्रोताओं, आज के मुकाबले में जर्मनी और अमेरिका शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि जापान और स्वीडन के बीच मुकाबला सबसे रोमांचक रहने की उम्मीद है। विश्व कप में हर मैच नई कहानी लिखता है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है।

0: दोस्तों आप बात चलते हैं ट्रैक एंड फील्ड की ओर और भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कीर्तिमानों की तो मानो झड़ी लगी है। महिलाओं की हैमर थ्रो में 18 साल की अनुष्का यादव ने कल अपने प्रदर्शन से 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सभी को चौंका दिया। इसके अलावा पोल वॉल्ट में देवमीना ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। अनुष्का ने हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का थ्रो कर 2017 में सरिता सिंह द्वारा बनाए गए 65.25 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में देवमीना ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करके 5.45 के अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। देवमीना ने इस अपने प्रदर्शन के बाद कहा,
1: हाल ही में मैंने एशियन गेम्स क्वालिफाई किया है, मैंने कॉमनवेल्थ भी क्वालिफाई किया और प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड था 545 और अभी हमने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया 546। पिछले बार मेरे साथ कुलदीप भी था, उसका भी नेशनल रिकॉर्ड था लेकिन इस बार उसने अच्छा थोड़ा सा उसकी बॉडी टायर्ड थी, इस वजह से वो अच्छा नहीं कर पाया। बाकी फीलिंग इज गुड, मेहनत मेरे से ज्यादा मेरे कोच की थी।

0: परिवार का हमें एसएमएस आया है डुमराव बिहार से। डॉक्टर डब्लू अंसारी और समस्त परिवार का हमें एसएमएस आया है। सारिमपुर बक्सर से भी आर राज एस डी अंसारी और समस्त परिवार का हमें एसएमएस मिला है। इसके अलावा नलेश्वर नगर नरवेर महाराष्ट्र से पीएस नलवालकर और समस्त परिवार का हमें एसएमएस मिला है। और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोट और समस्त परिवार का मैसेज आया जो सुनना चाहते हैं राकेश त्यागी को। महिपाल श्योरण नीरु उत्कर्ष और दिव्यांश गांव बड़दू चैना जिला भिवानी से भी हमें एसएमएस आया है।
1: रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाए भेज रहे हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाए भेज रहे हैं मेहर अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाए भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। मूंगी पैठन महाराष्ट्र से फरमाए भेज रहे हैं बाबा साहेब कंगणकर और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर राकेश त्यागी की आवाज में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे राकेश त्यागी की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और हमारे अगले कलाकार हैं हरेंद्र नागर, और इसकी फरमाइश की है हमें दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान और समस्त परिवार का। इसके अलावा रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी और समस्त परिवार का हमें SMS आया है। गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर और समस्त परिवार का हमें

0: एसएमएस आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। दुबिया नवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का हमें एसएमएस आया है।
1: चक 5 एमडी पतरोड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाई भी रहे मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार गोल्डन रेडियो श्रोता संग राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से फरमाई भेज रहे हैं राजेश कुमार वर्मा और इनका पूरा परिवार। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से फरमाई भेज रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाई भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सारापुर से फरमाई भेज रहे जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। चौधरीवास से फरमाई भेज रहे हैं राजू अग्रवाल और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलौट से फरमाई भेज रहे हैं रामेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। बराड़ा जिला अंबाला से फरमाई भेज रहे रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है कुसुम बहन चौधरीवास से भेजने वाले हैं संजय बिश्नोई और इनका पूरा परिवार। गांव हांडी खेड़ा से फरमाई भेज रहे हैं राधेश्याम शर्मा और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मेलौट पंजाब से फरमाई भेज रहे हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर हरिंदर नगर की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा होगा नल दमयंती का।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे हरिंदर नागर की आवाज में, ये रागनी और किस्सा था नल दमयंती का। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी

0: ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम राम।
1: तो कुसुम बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई, अपने इस कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर के आते हैं, उनकी फसलों से संबंधित, पशुओं से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित।
0: बिल्कुल, और मनोरंजन भी कराते हैं अतुल भाई। और देखिए ना, जो मसाले हैं हमारे लिए और किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और मौसम के हिसाब से यदि हम बात करें तो अजवाइन और सौंफ जो मसाले फसलें होती हैं, खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इन फसलों की बाजार में वर्ष भर मांग बनी रहती है, जिससे उचित मूल्य मिलने की संभावना रहती है। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं अतुल भाई। मसाला फसलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, इसलिए यदि हमारे किसान भाई बहन इस मसालों पर इसकी खेती करेंगे तो उसको ज्यादा उनको मुनाफा होगा।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कि अगर कम क्षेत्र में भी आप अच्छा आर्थिक लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं, और फसल विविधीकरण से खेती का जोखिम जो होता है वो भी कम होता है। और कुछ मसाले फसलें ऐसी भी हैं कुसुम बहन
0: जी,
1: जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, इनका व्यवहारिक महत्व अधिक होता है, और अच्छी देखभाल से उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त जो है हमारे किसान भाई जो है कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सावधानियां भाई यही हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं भाई, खरीफ मौसम में अधिक वर्षा के कारण जल भराव जो है अपने खेत के अंदर थोड़ा सा ना होने दें, क्योंकि ये जो मसाले वाली जो फसलें होती हैं ये थोड़ा सा जो है नाजुक होती है।
0: बिल्कुल अतुल भाई, मसाला फसलें जो होती हैं वह सफल खेती का आधार है।
1: हाँ,
0: उचित समय पर

0: आई, बेहतर जल निकासी और नियमित निगरानी या सावधानी के साथ की गई खेती किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ दिला सकती है।
1: बिल्कुल, और देखिए और अधिक जानकारी हम अपने सभी किसान बहन भाइयों को दिलवाते हैं डॉक्टर बल्ला से कि अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में किस प्रकार से बुआई कर सकते हैं, और ये इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बलराज सिंह, परियोजना निदेशक मशाला अनुसंधान संस्थान अजमेर, और इनसे बातचीत कर रहे हैं तुषार पारा सर। तो कुछ मैं लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों राम राम। भारतीय रसोई की कल्पना मसालों के बिना अधूरी है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनके साथ हम मसालों की खुशबू पर नहीं बल्कि उसकी आर्थिक ताकत पर बात करेंगे। भारत आज दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं धान से अलग हटकर मसाला फसलें हमारे किसानों की आय को दोगुना करने और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। इसीलिए हमारी इस बातचीत का विषय भी है मसाला फसलों की खेती से अधिक लाभ और कृषि अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, और इस विषय के हर छोटे बड़े तकनीकी और आर्थिक पहलू पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह जो कुलपति हैं गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा से। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ध्यान केवल केरला या दक्षिण भारत की तरफ जाता है, लेकिन आज उत्तर और मध्य भारत के जो किसान हैं वो भी मिर्च, धनिया, जीरा और सौंफ की खेती से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। बदलते समय में भारत के इस एग्री मैप पर जो कृषि मानचित्र है उस पर मसालों की इस नई स्थिति को आप कैसे देखते हैं?
3: पहले तो मैं बताना चाहूंगा भारत का बहुत ही प्राचीनतम इतिहास रहा है मसालों को लेकर के, और आपको पता होगा वास्को डी गामा आया तो वो मसालों की खोज में ही, काली मिर्च इलायची इनकी खोज में ही आया था
2: कालीकट के तट।
3: लेकिन आज जैसा आपने कहा जो काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, वही मसाला फसलें हैं, वो दक्षिण में होती हैं, लेकिन आज उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी बहुत सारी दूसरी मसाला फसलें जिनकी खेती की जाती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से दो किस्म के मसाला फसलें होती हैं। एक तो होती हैं बहुवर्षीय है।
2: जी।
3: जो एक बार लग गई तो कई साल तक चलेंगी, जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च का पौधा एक बार लग गया उसको सहारे की जरूरत है तो वो फिर आपका 30, 40, 50 साल तक चल सकता है, उसको सहारा चाहिए, चाहे एरिका नट पे लगाएं, चाहे कोकोनट के सहारे चढ़ाएं, चाहे दूसरी किसी प्लांटेशन क्रॉप उसके सहारे आप चढ़ाते हैं उसको। फिर इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब बहुवर्षीय फसलें हैं। हल्दी, अदरक भी उसी में आती है बहुवर्षीय में। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन काल से स्थिति बदली है आज, और जो हमारे बीजीय मसाला फसलें हैं जो एक वर्षीय हैं और एक वर्षीय के अंदर भी मौसमी है, सीजनल है। अब ज्यादातर सर्दी फसलें हैं जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, विलायती सौंफ और आपका सोवा, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि उत्तर भारत में और मध्य भारत में होती हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं काफी सालों के बाद, क्योंकि आज इन फसलों को लेके, काली मिर्च, इलायची, इनको लेके दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, ये हमारी प्रतिस्पर्धा में आए हैं विश्व व्यापार में, वो हमारे को टफ कंपटीशन देते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग डेस्टिनेशन पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी दूसरी फसलें हैं जिनको हम कम आंकते थे, जैसे जीरा है।
2: जी,
3: जीरा हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बीजीय मसाला फसल है, एक वर्षीय है और एक वर्षीय के अंदर सीजनल है, और सीजनल में भी मात्र ये 120 से 130 दिन की फसल है जीरा कुल। और इसका पहले खेती व्यापक रूप से होती थी हरियाणा में भी, राजस्थान में, गुजरात में, लेकिन आजकल सीमित इलाके खेती के रह गए हैं, क्योंकि क्या है कि जो जीरे को जो जलवायु चाहिए वो माइल्ड विंटर और ड्राई वेदर दो चाहिए, ठंड हो लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर ठंड ना हो, और ड्राई वेदर, नमी की मात्रा कम हो, वरना जीरा जो है एक बीमारी जो सबसे बड़ा कारण है ना उगाए जाने का वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट, झुलसा, चरमा, या दूसरा जो लोकल भाषा में नाम लेते हैं किसान, वो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
2: तो डॉक्टर साहब आपने जैसे ये बीमारी की बात करी कि जब भी हम मसाला फसलों की बात करते हैं तो उसमें एक आम किसान के लिए रिस्क प्रॉफिट रेशियो कैसे रहता है, मुनाफे का क्या अनुपात रहता है?
3: देखिए बिल्कुल, जो दूसरी फसलें जैसे आपने बात की उसके मुकाबले बीजीय मसाला फसलों में आमदनी ज्यादा होगी, डेढ़ गुना से दुगुना तक ज्यादा होगी, लेकिन उसको करने का तरीका सही, और उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दूसरी दिक्कत है, उसका सामयिक रोकथाम वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं बता रहा था, जीरा सिर्फ 120 दिन की फसल है, और आज पश्चिमी राजस्थान का इलाका जो है, नागौर से शुरू होकर जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, ये इलाके राजस्थान के हैं जो प्रचुर मात्रा में जीरे की खेती करते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, कुल मिलाकर

0: मैं मोटी मोटी बात ये करूं, जहां धुंध गिरेगी वहां जीरा नहीं हो सकता। तो उन इलाकों में जहां धुंध नहीं गिरती और नमी की मात्रा कम है, ठंड भी है, माइल्ड विंटर है, वहां पे जीरा होता है। इसके अलावा फिर आप चले जाइए गुजरात में, मेहसाणा से होते हुए, सुरेंद्र नगर से होते हुए आप कच्छ तक चले जाइए, जिसके अंदर जूनागढ़, राजकोट, ये पूरे इलाके जीरे के हैं। तो जीरे का एक सीमित क्षेत्रफल होगा, लेकिन धनिया दूसरी हमारी इंपोर्टेंट फसल है। इसका जो कटोरा है, जैसे कि जीरे का उत्पादन का कटोरा मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, गुजरात दो ही है। और धनिया का जो कटोरा है वो है मध्य प्रदेश के इलाके और राजस्थान के इलाके। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट? आपका दक्षिणी राजस्थान, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मंदसौर, नीमच, गुना, ये डिस्ट्रिक्ट कुछ एमपी के और कुछ राजस्थान के मिलकर कटोरा बनाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर धनिया तो होने को आंध्र प्रदेश में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने इन क्षेत्रों की बात की, तो मसालों की खेती के लिए जो मिट्टी की तैयारी और पोषक तत्व होते हैं, उनका प्रबंधन आम फसलों से कितना अलग है और इसके लिए क्या कोई विशेष सॉइल टेस्टिंग की जरूरत होती है?
0: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन इन इलाकों में जहां खेती की जाती है, इसका मतलब वहां की जमीन, वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण इन फसलों के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। जीरे का जैसे मैंने बात की, जीरे को बहुत ज्यादा खाद पानी नहीं चाहिए, जीरे को मैक्सिमम, वैसे हम शुरुआत में कहते हैं आप स्प्रिंकलर का यूज करें, लेकिन जनवरी के 15 के बाद हम कहते हैं अब स्प्रिंकलर मत चलाना, कहीं धुंध ना गिर जाए। तो फिर कम सिंचाई, अगर कम पोषक तत्वों की आवश्यकता जीरे को है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर दूसरी फसलों के मुकाबले करें। लेकिन बात यही है कि समय पर बुआई, वैरायटीज का सिलेक्शन। अब जैसे एक बीमारी आती थी जीरे के अंदर, अल्टरनेरिया ब्लाइट, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो आती है एंड में जाकर 15 जनवरी, 20 जनवरी के बाद या फरवरी के महीने में। अब वैरायटी आ गई 130 दिन से, वैरायटी 100 दिन की वैरायटी भी डेवलप हो गई, तो वो वैरायटी कहीं ना कहीं एस्केप कर सकती है, उससे बचकर निकल सकती हैं, तो वो बात है। धनिया में भी जैसे, ये नहीं कि आप सिर्फ धनिया दाने के लिए करेंगे जो मसाले में पिसा जाएगा, वो नहीं। आजकल ड्यूअल पर्पज, आप हरा धनिया भी तो खाते हैं ना, आप गार्निशिंग करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, तो वैरायटी सिंगल पर्पज भी है, दाने की वाली भी है, हरी भी है, ड्यूअल पर्पज वैरायटीज भी है, तो दोनों तरीके की खेती होती है। अब आजकल गर्मी में आप देखेंगे हरा धनिया बहुत महंगा है, तो इसका मतलब उसकी खेती। फिर आपका सौंप है, सौंप का इलाका भी राजस्थान में बिलाड़ा से होता हुआ, आबू रोड से होता हुआ गुजरात में चला जाता है पूरा का पूरा, और सौंप में भी वही है, हालांकि थोड़ी लंबी अवधि की फसल है, करीब करीब 150 दिन से लेकर 180-190-200 दिन तक की फसल है। लेकिन आजकल ड्वार्फ वैरायटीज अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज अवेलेबल है। और सौंप में भी किसान करते हैं, जब देखिए दो फायदे हैं, एक तो आप पका के काटोगे तो भाव कम होगा, उपज ज्यादा होगी, एक आप उसको जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे है और उसकी शेड ड्राइंग करते हैं, छप्पर वगैरह में आपके वो तोड़ लिया आपने अम्बल्स और उनको सुखाया, जिसको पिचक जाती है, हरी होती है और मीठी होती है, जिसको लखनवी सौंप गलती से हम लोग, तो वो लखनऊ में नहीं होती कोई सौंप, उसका तरीका है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके सेट ड्राइंग करना, उससे भाव उसका दुगने से ज्यादा होगा, मीठी होगी, लोग उसी को खाने के बाद खाते हैं ज्यादातर, मिश्री के साथ या चीनी के साथ सौंप को। इसके अलावा मेथी, मेथी में भी यही है, खुशबू वाली मेथी भी है, जो छोटे दाने वाली मेथी जिसको हम गलती से कसूरी मेथी कहते हैं, यह नागौरी मेथी, पान मेथी, ठीक है, ये नाम है इसका। फिर दूसरी बड़े दाने वाली मेथी, जिसको हम दाने के रूप में भी, क्योंकि उसके औषधीय गुण है मेथी के, औषधीय गुण क्या है, जोड़ों का दर्द, आपको गठिया जोड़, दूसरा डायबिटीज में, तो दो इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, एक तो 4-HIL और दूसरा डायजोनिन, दो कंटेंट है, लेकिन एक कड़वा तत्व भी इसके अंदर है, सेपोनिन कंटेंट है, जिसकी वजह से कड़वी है, इसलिए हम लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। और उसको हरी पत्ती के रूप में भी खाते हैं, आप सब्जी बनाते हो, परांठे वगैरह में डालते हो, तो ड्यूअल पर्पज वैरायटीज भी है और सिंगल पर्पज वैरायटीज भी है, दाने वाली भी, तो दोनों तरीके से। तो मेथी का खेती भी ज्यादातर राजस्थान में झुंझुनू से लेकर सीकर से लेकर और पूरे कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेथी की खेती भी होती है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम इसके आर्थिक पक्ष की एक बात करें, तो इन फसलों के लिए कोई किसानों को वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से करना होता है और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होता है?
0: देखिए, एक तो आधुनिक तकनीकें उगाने की किसानों को इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे जीरा महंगी फसल है, ठीक है, बीज कितने का आएगा, बहुत महंगा आएगा। अब आप बाजरे का बीज लोगे तो सस्ता आएगा, लेकिन इसका बीज महंगा आएगा आपका। तो जीरे में क्या है, अगर आप छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, लेकिन अगर आप उसी को, आजकल गाजर मशीन बोती है, न्यूमेटिक सीडर्स, अगर आप न्यूमेटिक सीडिंग करते हैं, लाइनों में बुआई करते हैं मशीनों से, तो 12-14 किलो बीज लगता है प्रति हेक्टेयर जीरे की बुआई में, वो घटके 7-8 किलो रह जाएगा, कितना जीरा बच गया, दसियों लाख हेक्टेयर हमारा एरिया है, तो किसानों को एक तो बुआई का तरीका, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बीमारी आती है जड़ से आती है, जमीन से लगती है, विल्ट उखटा रोग बोलते हैं हम इसको, उसकी रोकथाम के लिए एक तो वैरायटी काम कर सकती है, दूसरा सीड ट्रीटमेंट बीज का उपचार अच्छी फंजीसाइड से बहुत जरूरी है। धनिया में ऐसी वैरायटी है आजकल हमारी जिनमें रोग आते ही नहीं, कई ACR1 अजमेर की हमारी वैरायटी अजमेर कोरिएंडर 1 ड्यूअल पर्पज है, हरी पत्ती में भी चलेगी और दाने में भी चलेगी। और जहां तक आर्थिक उसकी बात है, निश्चित तौर पे किसान आज जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में जीरे की खेती करके, इसबगोल की खेती करके बहुत अच्छे पैसा कमा रहे हैं। और देश आज, मैं जब निदेशक था राष्ट्रीय बीजिया मसाला अनुसंधान जो केंद्र है अजमेर में, जो बीजिया मसाला फसलों पे काम करता, जीरा धनिया मेथी अजवाइन पे 2012 में, तो उस टाइम पे 2012 में जीरे का निर्यात देश से 280 करोड़ के लगभग था। आज जीरे का निर्यात 145 करोड़ को खिलाने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खाने वाले, 5,500 करोड़ से ज्यादा का जीरे का निर्यात है देश से।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चलाई है, और अगर हम बात करें विशेष रूप से मसालों की, तो स्पाइस बोर्ड्स और इसके अलावा MIDH भी एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी। इन स्कीम्स से किसानों को कितना फायदा पहुंचा है, इन योजनाओं का कितना लाभ हमारे किसान भाई उठा पा रहे हैं?
0: देखिए, किसानों के लिए इन योजनाओं का किसान लाभ ले सकते हैं, उसमें अनुदान है, उसमें आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं आप साबुत धनिया ही बेचें, आप धनिया की ग्राइंडिंग करके भी बेच सकते हैं। आप जरूरी नहीं जीरा साबुत बेचें, आप जीरे को प्रोसेस करके, ग्रेड करके, जीरे का पाउडर बना के भी आप बेच सकते हैं, एसेंशियल ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जितना भी अनुदान है, MIDH की आपने बात की, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या स्पाइसेस बोर्ड है, या कालीकट में एक इंस्टीट्यूट और है भारत सरकार का, सुपारी मसाला इंस्टीट्यूट, वो भी मदद करता है किसानों की। बीज को देने की बात करते हैं और किसानों से बीज उत्पादन की बात भी करते हैं, वही पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में किसान आए भागीदारी में और बीज पैदा करें, उसको वापस प्रोक्योरमेंट की बात है, वो भी है। तो हर लिहाज से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसाला फसलों की अगर आप खेती करते हैं, तो आज दक्षिण भारत में भी जितने मसाला फसलें हैं, आपका काली मिर्च है, इलायची है, उनमें भी अच्छी वैरायटीज। सबसे बड़ी बात है बीज एक तो, और एक प्लांटिंग मटेरियल, दोनों का रोग रहित और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और आपने एक और बात की थी आज लाल मिर्च, कभी हमने सोचा था अगर हमारा लाल मिर्च का इतना बड़ा निर्यात होगा, सबसे बड़े तो हम उपभोक्ता है, उसके बाद भी हमारा लाल मिर्च का निर्यात भी 8,000 करोड़ को पार कर गया था अभी। लेकिन दिक्कतें आती हैं, किसानों को भी ध्यान देना पड़ेगा, इनके निर्यात में दिक्कत आती है कई। एक तो आती है पेस्टिसाइड रेजिड्यू, एक दिक्कत आती है एफ्लाटॉक्सिन वगैरह की।
1: जैसे डॉक्टर साहब बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जो मानक हैं वो काफी कड़े हैं, हमारे किसान अपनी फसलों को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से बनाएं?
0: वो भी इसलिए कि आजकल जो आपने MIDH की या मसाला बोर्ड की बात की, आजकल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ग्लोबल गैप, उनके मापदंडों को अपनाते हुए हम किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं। और उनको जब किसानों को उनके बारे में बताएंगे, अगर भाई देखिए हम निर्यात में है और आपके जीरे में कोई एडल्ट्रेशन होगी, जैसे एलर्जी, अब मान लिया पहली फसल मूंगफली है और आपने बारदाना, बोरी, कट्टे और थ्रेसिंग फ्लोर्स और मशीन आपने मूंगफली की यूज कर ली, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, हमारी पूरी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई है। उसका कारण रहा अब पहली फसल, क्योंकि राजकोट जूनागढ़ इन इलाकों में मूंगफली है बड़े पैमाने पर, फिर बाद में जीरा होता है। तो किसानों को हम लगातार बताते हैं अगर भाई कतई नहीं, आप अगर वो भी बारदाना यूज करते हो, आप बोरी कट्टे यूज करते हो, तो उनको उल्टा कर दे, झाड़ दे, धूप में सुखा दे,
1: उसके रेजिड्यूज से हो सकता
0: नहीं
1: है।
0: आएंगे उसके जो पार्टिकल है वो नहीं जा पाएंगे। तो इन चीजों का नई हम नहीं करेंगे, भाई नई तो खरीदनी चाहिए वैसे, लेकिन सारी सावधानी बरत के गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपना के हम किसानों को लगातार ट्रेनिंग भी देते हैं, बताते भी हैं अगर भाई क्या है अच्छी कृषि क्रियाएं, बेहतर कृषि क्रियाएं क्या है, कौन कौन सी बाधाएं, क्या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारे जो मेजर बाधक हैं निर्यात के अंदर, या एलर्जेंट्स हैं, या आप अडल्ट्रेशन करते हो, या एफ्लाटॉक्सिन, जैसे लाल मिर्च के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफ्लाटॉक्सिन की, और वो कहां से आता है, सुखाने के दौरान, उसको सुखाते हैं जब तोड़ के, या तो लगातार बारिश होती रही और पौधे पर मिर्ची लगी है, वहीं पर फंगस डेवलप हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर सुखाने के दौरान ज्यादातर। तो इसका मतलब हमारे थ्रेसिंग फ्लोर या तो पक्के हों, या कम से कम हम नीचे पॉलीथीन का यूज करें, हम गीले ग्राउंड पर डालकर अगर उसको सुखाएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को फेस करनी पड़ेगी। तीन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उनसे निजात पाई जा सकती है और निर्यात में जो बाधक है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और किसान भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे उन तमाम किसान भाइयों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे जो इस साल मसालों की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं एक ही मूल मंत्र दूंगा कि आप करिए, कम लागत है, कम आपका पानी लगेगा, ज्यादा आमदनी आपको होगी और ये निर्यात योग्य फसलें हैं। और वैसे भी देश घरेलू खपत भी बहुत ज्यादा है, और मैं ये नहीं कहूंगा अगर आप सिर्फ पैदा

0: करें, आप उसमें वैल्यू ऐड करें, चाहे मिनिमम वैल्यू ऐड करें, अपना खुद का ब्रांड बनाएं, अपने गांव के स्तर पर, आपके खेत के स्तर पर, वहां आजकल छोटी मशीनरी अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करके आप मसालों की पिसाई या दूसरे प्रोडक्ट्स वहां पर बना सकते हैं, जिससे और ज्यादा लाभ आपको मिलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, अगर सही तकनीक, बाजार की समझ और वैल्यू एडिशन को जोड़ दें तो मसाला फसलें वाकई हमारे किसान भाइयों के लिए सोना साबित हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अजवाइन और सौंफ जैसी मसाला फसलों की खरीफ में बुआई, डॉक्टर बलराज सिंह परियोजना निदेशक मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर से तुषार पराशर की बातचीत।
3: और अब अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं लोकेंद्र से ये उपदेश।
4: धरती

0: धरती की शोभा सृष्टि रवि तारे चांद गगन की, और दान करे से धन की शोभा, भजन करे से मन की। बहुत ही सुंदर उपदेश अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुना लोकेंद्र सिंह की आवाज में, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पाल।

0: सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 7:30 और 14 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में, फिल्म अनोखी अदा से।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका

0: పర్దే కే
1: ई आई आर लाइव न्यूज 24/7 पर आप बने हुए हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं गजल कब्बाली का कार्यक्रम। और अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं फिल्म उमराव जान को, मैं आशा भोसले को।

0: और इसी के साथ ये गज़ल कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का या लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। शाम के 7:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने सीएम श्री स्कूल के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया, 2 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक और छात्र केंद्रित सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए व्यय वित्त समिति ईएफसी ने लगभग 265 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत स्कूलों में आधुनिक प्रवेश द्वार, स्मार्ट आधारभूत ढांचा, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं और खेल मैदानों का विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और कंप्यूटर लैब तथा मल्टीपर्पज हॉल का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप, टेक्सटाइल पाथ और अन्य दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल विद्यालयों भवनों की मरम्मत कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजना के सभी कार्य अगले वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी में गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में आज एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने कहा कि एनडीएमसी की नवी अनुपम कॉलोनी है।
3: ये नवी कॉलोनी है जो हमें अनुपम कॉलोनी में की उपाधि देने में हमें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। नवी कॉलोनी में पहली कॉलोनी जिसने अपना काम सामने रख दिया है कि और किसी को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो कंपोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है और यहाँ का एक तिनका भी बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे इतना भी कूड़ा निकलता है वो या तो कंपोस्ट होता है या फिर उसको सेग्रीगेट करके ये जो सामने वाले बिन देख रहे हैं इन सबों में जाता है, जिसको फिर से रिसाइकिल किया जाता है।
1: गोल्फ लिंक कॉलेज

0: कॉलोनी में कचरे का निपटान स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है और ये उपलब्धि परिषद और स्थानीय निवासियों के सहयोग से हासिल की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें 52 एकड़ में फैले जलाशय और इसके आसपास के 165 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए तैयार कार्य योजनाओं की जानकारी दी। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक ढांचा तैयार करने और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि न्यायमूर्ति गाबा समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कोचिंग संस्थानों के लिए नियम और कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से आयोजित किया था। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने तेजी से बदलते साइबर खतरे के परिदृश्य के बीच सरकारी डेटा, डिजिटल अवसंरचना और नागरिक सेवाओं की सुरक्षा में साइबर सुरक्षा की बढ़ती जरूरत पर विशेष जोर दिया।
1: साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार पूरा काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सक्सेस के पर और दिल्ली सरकार भी इस पर काफी एक्टिव रोल से काम कर रही है। हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी जो इंटैक्ट होकर साइबर के जो हैकर्स होते हैं, देखिए साइबर का कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी हैक कर सकते हैं। उससे कैसे अपनी डाटा को सिक्योरिटी में रखा जा सके, उसके सारे कंसर्न टीम आ रखे हैं।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी जिलाधिकारियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की पहचान, धूल प्रदूषण नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए मूलभूत है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को बाहर रखना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 6 के तहत पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देशभर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। गिरफ्तार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाने

0: और बैंक खाते संचालित करने में शामिल थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में दुर्गापुरी एक्सटेंशन से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 600 क्वार्टर शराब की बोतलें और अपराध में इस्तेमाल वाहन को बरामद किया। एक अन्य मामले में पुलिस ने नजफगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी को 500 क्वार्टर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद हमें दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: संविधान हत्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 25 जून 1975 की वो रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात था। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया और मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल उन शिक्षकों को दिए जाते हैं जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। निर्जला एकादशी के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि निर्जला एकादशी आस्था, संयम और सेवा का एक पावन पर्व है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएस एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम में एमएसएमई प्राइड वॉकथन 2026 का

आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA दिल्ली ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के सहयोग से किया। कार्यक्रम का विषय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के लिए साथ साथ चलें था। इस अवसर पर IIA दिल्ली की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने CM श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गोल्फ लिंक कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में आयोजित। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून से शुरू और CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में राजधानी दिल्ली और कई राज्यों में अभियान चलाया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है रात्रि के 8:15। आइए सुनते हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं कुमार सानू को, फिल्म का नाम है दिलवाले और इस गीत रचना है समीर की और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।
1: कमान अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: हाँ कमान अरुण, कमान कमान कमान यार,
3: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
2: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्माई बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिस तो नहीं गया
1: क्या मालूम?
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
3: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

तौबा, ये मतवाली चाल फिल्म पत्थर के सनम में अभी आप सुन रहे थे मुकेश को, संगीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म हम दिल दे चुके सनम में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुदरत में। गीत रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन था आरडी वर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और साथी। गीत रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। इसी के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
3: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को

फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति

0: सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और वाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ।

0: Sub-Himalaya in West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रूपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती मुआहदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहदों में सबसे जामे मुआहदा है। जनाब पीयूष गोयल, 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा, अहम मादनियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की $48 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि यह दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एंडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्ज ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़िश्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की सदर ने

जिले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में तआवुन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली के लिए जेजू फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तिलाफात पर जोर देने के रुझान में इजाफा हुआ है और उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप में ऐसी इम्तियाजी खसूसियात की हौसला अफजाई होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड-19 दहशतगर्दाना वाकयात या इंतहाई मौसमियाती वाकयात जैसे चैलेंजों से निपटने की गरज से बैन अक्वामी तआवुन और इश्तराक की जरूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुतबूस से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के डीजी परवीन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि तीन अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग के मौके पर ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मोहसिन पाकनेजाद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने तवानाई के शोबे में तआवुन के लिए मौके के बारे में गौर खोज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात साझेदारी और बाहमी तौर पर मुफीद रवाबित के जरिए तवानाई की यकीनी फराहमी में इजाफे के लिए अहदबंद है। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिया को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में तआवुन की तौसीक की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमू, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफहात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबी 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफहात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6000 रुपये होगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 36 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये और 60 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये है। अगर 36 सफहात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो इसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफहात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6000 रुपये होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की बारबरदारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इसलाहात पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाजे किया है कि वैगनों का डिजाइन
سند کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔

पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामع मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत के इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2500 रूपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5000 रूपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

وكواعب أترابا وكأسا.

ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश

संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।
2: श्रोताओं, अब रात्रि के 2 बजने को हैं, ये सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
4: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
5: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
4: And together becoming a force multiplier.
3: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।

0: मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयारा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयारा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। राज्य के उत्तरी उप हिमालयी जिलों में बारिश और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोलकाता उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188 people, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. He added that 250 buildings, primarily in La Guayra, have been damaged or destroyed. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice. She also activated the public and private health networks in the most affected areas. The Director General of Civil Aviation yesterday said that it was investigating an incident when an Air India plane came in front

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

0: इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली

भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रॉड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ICC महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये जो गजलें अभी आपने सुनी ये सब थी गुलाम अली साहब की आवाज में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। कलाकार हैं चंदन दास। इसकी जो गुलुकार यानी कि जो गजल रचना की है वो है नुसरत वद्र साहब ने, और जो इसकी जो कंपोजर हैं वो हैं चंदन दास जावेद कुमार। और इसके जो गीत रचना जो गीत आवाज़ है जो गजल की जो गायक हैं वो हैं चंदन दास। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है।

0: जगजीत सिंह की इन्हीं गज़लों के साथ में आज का ये गज़ल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जी दुर्गादास और पार्टी से नादास्वरम वादन। इसी के साथ ये कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म अब यहीं संपन्न होता है। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक सम्मत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा योग, पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20 और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे दीनानंद मिश्र का गायन, राग होगा भटियार।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरि तीर्थ सिंह से शब्द। गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा जो कि फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होता है, सुबह 7:30 और 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा कार्यक्रम सुबह 9:15 पर होगा जिसमें आज वार्ता का विषय रहेगा खादी और उसके प्रयोग पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी रेणु श्रीवास्तव।

दी महक। और 10:10 पर फिल्म संगीत होगा आपकी पसंद, 11:10 पर सबरस कार्यक्रम के का प्रसारण होगा, 11:30 पर सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे राजीव वर्मा का सितार पर बजाया गया राग जौनपुरी।

0: 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा, एक आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। ये आकाशवाणी, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशी

कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है।